कहे कहाय, अंदरों मुक्त लेप कदे ना लाए, माया मोह गुर शब्द जलाए, निर्मल नाम सद हृदय कहाय, तापत राखे ठाक रहाय, सिख संगत कर्म मिलाए, गुर बिन पूलो आवे जाए, नदर करे संजोग मिलाए, रूड़ो कहो न कहे आ जाय, अकथ कहो न कीमत पाई, सब दुख तेरे सूखर जाई, सब दुख मिटे सत्य नाई, कार बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखे रखवाला, तिर पवन सूजे आप गुवावे, पानी बूझे सच सुमावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक तन सुवारण हारा, आसा मोहल्ला पहला, लेख असंख लेख लेख मान, मन माने सच सुरत वकान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख अपार, ऐसा साचा तू एको जान, जमन मरण हूं पछाण, रहाओ माया मोह जग बादा जमकाल, बंदा छूटे नाम समाल, गुर सुख दाता अवर न पाल, हलत पलत निर्गी तुद नाल, सद मरे ता एक लिवलाय, अचर चरे ता परम चुकाए, जीवन मुक्त मन नाम साए, गुरमुख होए ता सच सुमाए, जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब तापी ताप उताप, सर्ब निरंतर आपे आप, किसे ना पूछे बगसे आप, तू पुर सागर मानक हीर, तू निर्मल सच गुणी गहीर, सुख मन भेटे गुर पीर, एको साहेब एक वजीर, जग बंदी मुक्ते हो मारी, जग ज्ञानी विरला आचारी, जग पंडित विरला विचारी, बिन सतगुर भेटे सा फिरे अंकारी, जग दुखिया सुखिया जन कोय, जग रोगी भोगी गुण रोय, जब उपजे बिन से पल खोय, गुरमुख होवे बूझे सोए, महंगो मोल पार अपार, अटल अछल गुरमती तार, पाए मिले पावे पैकार, नानक नीच कहे विचार, आसा महला पहला, एक मरे पंचे मिल रोवे, हौ में जाए शब्द मल तोवे, समझ सूझ सहज कर होवे, बिन बूझे सगली पर खोवे, कौन मरे कौन रोवे ओही, करण कारण सबसे सिर तोही, रहाओ मुए कौ रोवे दुख कोय, सो रोवे जिस बेदन खोए, जिस बीती जाने प्रस होए, आपे करता करे सुहोए, जीवित मरना तारे तरना, जय जगदीश परमगल सरना, हौं बले हारी सदगुर चरणा, गुर बोहेत शब्द पै तरना, निरप आप निरंतर जोत, बिन नावे सूतक जग शोत, दुर्मद बिन से क्या कहे रोत, जन्म मुए बिन भगत सरोत, मुए को सच रोवे मीत, त्रैगुण रोवे नीता नीत, दुख सुख परहार सह सोचीत, तन मन संपव कृष्ण प्रीत, पीतर एक अनेक असंख, कर्म तर्म बहु संख असंख, बिन पै भक्ति जन्म बिरंत, हर गुण गावे मिल परमारंत, आप मरे मारे पी आप उपाए था प्योताप, सिठ उपाई ज्योति तू जात, शब्द विचार मिलन नहीं प्रात, सूतक अगन पखे जग खाए, सूतक जल तल सब गीताए, नानक सूतक जन्म मरीज, गुर प्रसादी हरस पीज, राग आसा महला पहला, आ विचारे सो परखे हीरा, एक दृष्ट तारे गुर पूरा, गुर माने मन ते मन तीरा, ऐसा साओ सरा पी कर, सची नगर एक लिवतर, रहाओ पूंजी नाम निरंजन सार, निर्मल साज रता पैकार, सिवत सहज कर गुर करतार, आसा मनसा सब जलाए, राम नारायण कहे कहाए, गुर ते वाट महल कर पाए, कंचन काया जोत अनूप, तिर पवन देवा सगल स्वरूप, मैं सो तन पल्ले साच अकूट,
ਪੰਚ ਤੀਨ ਨਵ ਚਾਰ ਸਮਾਵੇ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਤਲ ਤਾਰ ਰਗਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਜਾਤੋ ਉਲਟ ਪਰਾਵੇ, ਮੂਰਖ ਹੋਏ ਨਾ ਆਖੀ ਸੂਜੇ, ਜੇ ਵਾਰਸ ਨੀ ਕਹਿਆ ਬੂਝੇ, ਪੇਕਾ ਮਾਤਾ ਜਗ ਸਿਉ ਲੂਝੇ, ਊਤਮ ਸੰਗਤ ਊਤਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਣ ਕੋ ਤਾਵੇ ਅਵਗੁਣ ਧੋਵੇ, ਬਿਨ ਗੁਰਸੇਵੇ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੀਰਾ ਨਾਮ ਜਵੇ ਹਰ ਲਾਲ, ਮਨ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤਿਸਕਾ ਮਾਲ, ਨਾਨਕ ਪਰਖੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰੀ, ਅਰਹਾਉ ਆਏ ਨਿਸ ਨਿਰਮਲ ਥਾਨ ਸੁਥਾਨ, ਤੀਨ ਪਵਨ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨ, ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣ, ਸਾਚਾ ਹਰਖ ਨਾਈ ਤੇ ਸੋਗ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਹਾਰਸ ਭੋਗ, ਪੰਚ ਸੁਮਾਈ ਸੁਖੀ ਸਵਲੋਕ, ਸਗਲੀ ਜੋਤ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋਈ, ਆਪੇ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜੇ ਸੋਈ, ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਈ, ਤਾਏ ਉਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੋ ਵਰਤੇ ਜੋਤ ਪਾਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਬਾਲਕ ਬਿਰਧ ਨਾ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਪਰ ਜੋ ਬਿਨ ਬੂਢੇ ਅਵਮਾਨ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਕਿਆ ਲਹੇ ਸਨਿਦਾਨ, ਜਿਸ ਕਾ ਅਨ ਧਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਜਾਨਾ, ਪਰਮ ਪੁਲਾਨਾ ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ, ਗਲ ਪਾਗੀ ਬੌਰਾ ਬੌਰਾਨਾ, ਬੂੜਤ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਡਰ ਪਾਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖੇ ਸੇਵੜ ਪਾਗੇ, ਨਾ

मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृतस खोजत पावो सहज हरे हरहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लब लोभ अहंकार सुपीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साज शब्द बिन मैल ना पछाणे निरंकार में आकार समावे अकल कला सज साज टिकावे सोनर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम स्या सुखदाता अनदिन बाणी नामे राता मेरा प्रलाए ता को लागे होमे मारे सब दे जागे ऐथे उथ सदा सुख आगे मन चंचल विद ना ही जाने मन मुख मैल शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जू आगे करी अरदास साधु जन संगत हुए निवास।

ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन में तप करे नित तीर्थ वासा आप न जीने तामसी काहे पय उदासा एक बिंद जदन कर राख दे से जति कहावे बिन गुर शब्द ना छूटगी प्रम आवे जावे एक गिरगी सेवक साधका गुरमती लागे नाम दान इस नाम गिरड़ हर भगत सो जागे गुर ते दर कर जानिए जो जाए सियाने नानक नाम न विसरे सचे मन माने आसा महला पहला मनसा मने समाये ले।

नाथ नाम अमोल है, तू उत्तम हो नीत सेवक कांडिया, नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया। आसा महला पहला आमन जाना क्यों रहे, तो मेला होई जन्म मरण का दुख कणो निर्शेषा दोई, बिन नावे क्या जीवना फिट त्रिगच तराई, सतगुर साधना सेवया हर भगत ना पाई, हरहाओ आमन जामन तौ रहे पाइये गुरपूरा, राम नाम तन रास दे बिन से प्रमकूरा, संत जिना को मिल रहे तान तान जस गाये, आद पुरख अपरंपरा गुरमुख घर पाए, नडुए सांग बनाया बाजी संसारा, खेन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा, होमे चौपड़ खेलना झूठे अंकारा, सब जग हारे सो जने गुर शब्द विचारा, जो अंधले हथ टोनी हर नाम हमारे, राम नाम हर टेक है निद दौत सवारे, ज्यो तू राखे त्यो रहा हर नाम आधारा, अंत सखाई पाया जन्म मुक्त द्वारा, जन्म मरण दुख मेटे जप नाम मुरारे, नानक नाम ना विसरे पूरा गुर तारे। आसा महला तीजा अष्टपदिया तार दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद

अस्तु मारे रिस प्राण आधारी ताके रूप न जागी लखने क्या कर आग विचारी तीन गुणा तेरे जोगी अंतर प्यारे तेरी आखाणी कर्म होवे ता परम पद पाइये कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या को करे प्राणी जा को नदर करे तू अपनी साई सच समाणी नाम तेरा सब कोई लेत है जेती आमन जानी जान तो पावे ता गुरमुख बूझे होर मनमुख फिरे ए आनी चारे वेद ब्रह्मे को दिए पढ़ पढ़ करे विचारी ताक मना बूझे बपड़ा नरक सुर्ग अवतारी जुगे जुगे के राजे किए गावे कर अवतारी इन पी अंत न पाया ताका क्या कर आख विचारी तू सच्चा तेरा किया सब साचा देता साच वखाणी जा को सच बुझावे अपना हृदय नाम सुमाणी आसा महला तीजा सदगुर हमरा परम गवाया हर नाम निरंजन मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला शब्द जाने गुरमुख पाए गे नाम निधान रहाओ सदगुर भेटे की वडियाई जिर ममता अगन तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई बिन गुर पूरे कोय न जानी माया होए दूजे लोभाणी गुरमुख नाम मिले हर बाणी गुर सेवा तपा सिर तब सार हर जीव मन वस सब दुख विसारण हार दर साचे दिसे सत्यार गुर सेवा ते तिर पवन सोजी होए आप शान घर पावे सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखे उर तारे साची शोभा साध दुआरे सेवड़ भागी जे गुर सेवा लाए आन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए।

अष्टपदियां कर अठवां काफी गुर ते साख उपजे जिन तिसना अगन बुझाई गुर ते नाम पाईए वड्डी वड्याई एको नाम चेत मेरे पाई जगत जलंदा देख के पर पैसर

बिन नावे सब नीच जात है, दिष्टा का कीड़ा होए, हाँ हों कर दी सब फिरे, बिन शब्दे हो ना जाए, नानक नाम रते तिन हो मैं गई, सच्चे रहे सुमाए, आसा मोहल्ला तीजा, सच्चे रते से निर्मले, सदा सच्ची सोए, ऐसे कर कर जाप दे, आगे जुग जुग प्रकट होए, ए मन रूड़े रंगले, तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे, ना यो रंग लय ना जाए, अरहाओ हम नीच मैले अत अपमानी, दूजे पाए विकार, गुर पारस मिले कंचन होए, निर्मल जोते पार, बिन गुर कोई ना रंगी है, गुर मिले रंग चढ़ाओ, गुर के पाए पाए जो रते, सिवती सच सुमाओ, पाए बिन लाग न लग गई, नामन निर्मल होए, बिन पे कर्म कमावने, झूठे ठाओ न कोए, जिसनु आपे रंगे सो रबसी, ससंगत मेलाए, पूरे गुरते ससंगत उपजे, है जे सच सुपाए, बिन संगती सब ऐसे रहे, जैसे पल टोर, जिनकी तेत से ना जाननी, बिन नावे सब चोर, एक गुण विहाचे अवगुण विकणे, गुर

सात सहित सुखे सब हाट सा व्यापारी एक थाट जेजिया डन को लय ना जगात सगुर कर दीनी तुरकी शाप वखर नाम लड़खेब चिलावो लैलाह गुरम कर आवो सदगुर साहो सिख बन जारे पूंजी नाम लेखा साज सुमारे सो वस्ते इत कर

साध संग हर घर जपत निर्मल साची रीत रखाओ दर्शन की प्यास कणी चितवत अनक प्रकार तरो अनुग्रो पार ब्रह्म हर कृपा तार मुरार मन परदेसी आया मिलो साध के संग जिस वखर को चाहता सो पायो न मै रंग जेते माया रंग रस बिरस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यो सुख पुंचे सब ठाए सब जग चलतो पेकीय नेचल घर को नाओ कर्म तराई सास्यो नेचल पावे ठाओ मीत साजन सुत बंद पर को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम दीना का प्रभनाथ चरण कमल भोयत पये लग सागर तरे होते हे पेट्यो पूरा सदगुरु साचा प्रस्यो नेहे सा तेरे की जाचना विसरना सास गिरास जो तु पावे सो फला तेरे पाने कार्ज रास सुख सागर प्रीत मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्राभ पेटे परमानंद आसा महला पंजवा बिरघड़े कर चौथा चंता की जत एक ओंकार सदगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रसिमरिये प्यारे दर्शन को बल जाओ जे सिमरत दुख बीसरे प्यारे सो क्यों तजना जाए क्यों तन वेती संत पे प्यारे प्रीतम दे मिलाए तुसी गार बिखिया के भी।

पाए, माया के संगल बंद लया, खखे खुंद कार सा आलम, कार खरीद जिन खर्च दिया, बंधन जाके सब जग बांधया, अवरी का नहीं हुकुम पया, गगे गोए गाय जन छोड़ी, गली गोबिंद गर्व पया, ताड़ पांडे जिन आवी साजी, चाड़ नवागे तई किया, कगे काल सेक जे ताले, शब्द गुरु के लाग रहे, बुरा पला जे सम कर जाने, इन बिद साहेब रमत रहे, चचे चार विरजन साजे, चारे खानी चार जुगा, जुग जुग जोगी खानी पोगी, पढ़िया पंडित आप थिया, छे छे छाया वर्ती सब अंतर, तेरा किया परम हुआ, परम उपाय भुलाई गए आपे, तेरा कर्म हुआ, तिन गुरु मिलया, जजे जान मंगत जन जाचे, लग चौरासी पीह पया, एको लेवे एको देवे, अवर न दूजा मैं सुनया, झजे चूर मरो क्या प्राणी, जो कुछ देना सो दे रहा, दे दे वेखे हुकम चलाए, ज्यो जिया घर जिक पया, न्यन्ये नदर करे जा देख, दूजा कोई नाही, एको रब रहा सब थाई, एक वसया मन माही, टट टंच करो क्या प्राणी, कड़ी के मौत के उड़ चलना, जुए जमन हारो अपना, पाज पड़ो तुम घर सरना, ठठे ठाण वर्ती तिन अंतर, हर चरणी जिनका चित लागा सही जा निस्तरे, तो प्रसादी सुख पाया, डडे डंप करो क्या प्राणी, जो किश हुआ सो सब चलना, किसे सिरे वो तांसु पाव, सर्ब निरंतर रब रहे या, टड्डे टाए उसारे आपे, ज्यों तुझ पावे तिवे करे, कर कर वेखे हुकम चलाए, तिस निस्तारे जा को नदर करे, नाणे रबत रहे काटे अंतर, हर गुण गावे सोई, आपे आ मिलाए करता, पुनरप जन्म न होई।

मनो मेरा मन रत राम प्यारे राम सच साहेब आदि पुरख अपरंपरो तारे राम अगम अगोच अपर अपार पार ब्रह्म प्रधानो आजुगा दी है पी होसी अवर झूठा सा मानो कर्म धर्म की सार न जाने सुरत मुक्त क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाणे महर्ष नाम ते आई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सिखाई राम हो मैं ममता माया संग न जाई राम माता पित भाई सुच तराई संग न संपे नारे सायर की पुत्री परघर त्यागी चरण तले विचारे आद पुरख चलत दिखाया जे देखा तै सोई नानक हर की भगत न छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच समाले राम अगुण मेड़ चले

कहो नानक गुर शब्द सवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़े कामण परम पुली हर वरना पाए राम कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मानमुख ए आणी औगुणवंती चूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चे शब्द सुभाए नानक विण नावे कामण परम पुलाणी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामण जानिया गुरमेल मिलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तप्त बुझाई राम शब्द तप्त बुझाई अंतर सांत आई सहजे हारस चाखिया मिल प्रीत में अपने सदा रंग माने सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मुनी थाके एकी मुक्त न पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चे शब्द मिलाई सा तन मन अंद पया हर जीव मेल प्यारे राम सा तन हर के रस रसी गुर के शब्द अपारे राम शब्द पारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन मसे छेद सुहावी जां तिर रावी मिल प्रीतम अवगुण नसे जित कर नाम हर सदा त्याई है सोहिलड़ा जुग चारे

शांत करती जा। साजन मेरे प्रीतमो तुम सह की भगत करे हो, गुर सेवो सदा अपना नाम पदार्थ ले हो। भगत

जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाए जियो। कालजुग हर किया पग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीर्त हर सांत पाए जियो। हर कीर्त तुरक आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कालजुग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हिरदे नाम लखाए जियो। कालजुग हर किया पाग त्रैखिस किया, पग चौथा टिके टिकाए जियो। आसा महला चौथा हर कीर्त मन पाई, परम गद पाई हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया, तुरमस्तक पाग पुराण जियो। तुरमस्तक पाग हर नाम सुहाग, हर नाम में हर गुण गाया। मस्तक मणि प्रीत बो प्रगटी, हर नाम में हर सोहाया। ज्योति ज्योत मिली प्रापाया, मिल सदगुर मनुआ मान जियो। हर कीर्त मन पाई परम गद पाई, हर मन तन मीठ लगान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते ऊतम जन प्रधान जियो। तिन हम चरण सरे वेखिन खिन, भगत होवै जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख भागा रती चारे। गुरमत हर गाया हर हार उर पाया, हर नामा कंठ तारे। सब ए दृट समत कर देख, सब आत्म राम पछाण जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते ऊतम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, वे संगत हरस होए जियो। हर हर आराध्या गुर शब्द वेगासया, बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सोबिध जाने। तन तन गुरु पूरा प्रापाया, लग संगत नाम पछाणे। नामो सेव नामो आराध्य, बिन नामे अवर ना कोए जियो। सत संगत मन पाई हर रस नरसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर दया प्रतारो पाखण हम तारो, कड़ ले वो शब्द सुपाए जियो। मोची कड़ फाथे निगरत हम जाते, हर भा प्रभु पकराए जियो। प्रभा पकराई उत्तम मत पाई, गुर चरणी जन लागा। हर हर नाम जपया आराध्या, मुख मस्तक पाग।

तारो कर ले वो शब्द सुभाए जियो। आसा महला चौथा मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ जीवन मुक्त सुखोई। जीवन मरण हर नाम सुहेले मन हर हर हृदय सोई। मन हर हर वसया गुरमत हर रसया हर हर रस गटाग पियाओ जियो। मन नाम जपाना हर घर मन पाना हर भगत जना मन चाओ जियो। जग मरण न पाया निद आप लुकाया मत जंप करे ले जाए जियो। हर अंतर बार हर प्रभ एको यो जीड़ा रखिया ना जाए जियो। क्यों जियो खीजे हर वस्तु लुड़ीजे जिसकी वत सो ले जाए जियो। मन मुख करण पलाव कर परमे सब औखद दारू लाए जियो। जिसकी वस्त प्रभ लय स्वामी जन उबरे शब्द कमाए जियो। जग मरण न पाया नित आप लुकाया मत जा पकरे लय जाए जियो। तो मरण लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वड्याई हर दरगे पैदे जान जियो। हर दरगे पैदे हर नामे सीधे हर नामे ते सुख पाया। जन्म मरण दोवें दुख मेटे हर रामे नाम सुमाया। हर जान प्रभ रल एको होए हर जान प्रभ एक समान जियो। तुर मरण लखाया गुरमुख सोहाया जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजे दिन से दिन सुबिनास लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रस करसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर भौड़ मरण ना होई। हर हर नाम अमर पद पाया हर नाम समावे सोई। जन नानक नाम आधार टेक है बिन नावे अवर ना कोए जियो। जग उपजे बिन से बिन सुबिनस लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा शंत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। ताकीगत कही न जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार अपरंपर आप अपना जाने क्या ए जंत विचारे कहिए जो तुद आख मखाने। जिसनू नदर करे तू अपनी सो गुरमुख करे विचार जियो। वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरख परंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब मै रहा समाए जियो। घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत न पाया तिस रूप न रेख अदृत्या गोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रहे दिन राती सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निधान जियो। हर हर प्राप्त एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तो देवड अवर ना कोई। तेरा शब्द सब तू है वरते तू आपे करे सुहोई। हर समय रविया एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सद परमेश्वर सदा अविनाशी।

जय जय संत आराध्य तहत प्रगटाया प्रभु आप लिगे सुमाए सह सुपाए भक्त कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख विसारिया चमत्कार प्रगास दय दिस एक तय दृष्टाया नाक पयंपय चरण जंपय भगत वशल हर बिरद आप बनाया आसा महल्ला पंजवा तिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाके ग्रेव हर ना हो सो सदगी रावे अवनासी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला न दूर सदा हदूर ठाकुर दैज पूर्ण ससद प्राण पत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम पावे नानक वखाने गुरबचन जाने फिर संतन सोहाक मरे ना जावे जाको राम पतार ताके अंध कणा सुगवंती सानार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्व सिद्ध नव निद तिद करे नहीं ऊना सब कशु मदरबानी तेरे मानी थे सुहागता का बना नानक वखाने गुर भजन जाने जाको राम पतार ताके अंधकणा आओ सकी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है तया मिटे संताप आप ने जानाई है शरण गही जे मान लीजे करे सो सुख पाई है कर दास दासी तज उदासी कर जोड़ दिन रहन जागी है नानक वखाने गुर बचन जाने आओ सकी संत पास सेवा लागी है जाके मस्तक भाग से सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लग गया परम हो विकार दूजा सगल तिने त्याग गया मन सांत सहज सुभाव उठा अंध मंगल गुण गाया नानक वखाने गुर भजन जाने जाके मस्तक पाक से सेवा लाया आसा महला पंजवा सलोक हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहे जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिले गोपाल चंत मिलो संतन के संग

बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज सुमाणी सुख सोहलड़े हर गामन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन पागे सुख सहज सरसे हर नाम रहसे प्रभु आप कृपा तारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवसे आए सहज पाए सगल निध प्रा पागे बिनवंत नानक सरण।

दुखा सजाई गणत नाही, पिया अपना पायो गुजा कमाना प्रगट होआ, ई पुते खुवारी नानक।

संताप चितवो चितनाथ, चितवो चितनाथ रे रख ले वो शरण अनाथ रे। मिल चाओ चाइले प्राण, सुंदर तन ध्यान, सुंदर तन ध्यान हे मन लब्ध गोपाल ज्ञान हे। जाचक जन राखत मान, प्रामाण पूर्ण दुख बदीरन, सगल इश पूजंतिया। हर कंठ लागे दिस भागे, मेरे नहा सेज सोहंतिया। प्रभ दृष्ट धारी मिले मुरारी, सगल करमल पय खान। बिनवंत नानक मेरी आस पूरन,

खेते अंदर छुटिया को नानक सो नाहा फलगे फुलगे बपड़े पीतन विच स्वाहा पौड़ी आपी ने आप

सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच।

पूर सगलिया पौलिखिया सिरलेख नानक निरभउ निरंकार सच एक महला पहला नानक निरभउ निरंकार पुर केते राम रवाल केतिया कन कहानिया केते वेद विचार केते नचे मंगते गेड़ मुड़ पूरे ताल बाजारी बाजार में आए कटे बाजार गावे राजे रानिया बोले आलपताल लखटकिया के मुंदड़े लखटकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन होवे शार ज्ञान ना गले टूडिये कतना करड़ा सार कर्म मिले ता पाईए होर हिकमत हुकम खुवार पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बहुते जन्म भरमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुनेहो लोक सवाया सतगुर मिले सज पाया जिनी विच्चों आप गवाया जिन सच्चो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पैर कन गोपाल गहने पौन पानी बै संतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन वर्त।

तीर्थ नहावे अर्चा पूजा अगरवास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सतिया मन संतोख उपजय।

लग तब उपर तीर्थ सहज जोग बेबाण, लग सूरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लह सुरती लह ज्ञान ध्यान पढ़िए पाढ़

पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू देह तिस मिले सच ता तिन्ही सच कमाया सदगुर मिले सच पाया जिन कै हिरदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया श्लोक महला पहला पढ़ पढ़ गड्डी लभदी है पढ़ पढ़ परिए साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गल होर हो में चखना चाख महला पहला

रसवा हो, कालजुग रास अगन का कूण अगे रसवा हो। महला पहला साम कैसे तंबर स्वामी, सच में आछे साच रहे सब को सच समावे। रेग कह रहया पर पूर, राम नाम देवा मैं सूर। नाए लय प्राशित जाहे, नानक तो मोख अंतर पाहे। जुज में जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम पया। पार जाद गोपी ले आया, बिंद्रावन में रंग किया। कल में वेद अथर्वण हुआ,

तोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं साभूत निश्चय कर्मं कौ नानक नेत्यो त्यावे वेण सदगुरु वाट ना पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना होम किए मन पाम दे राहे पीड़े अगे जावना नंगा दोजक चालिया ता दिसे खरा डरावना कर औगण पछो तावना श्लोक महला पहला दया कपा संतोख सूत जद गंडी सतवट यो जिनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना यो तुटे ना मन लगे ना यो जले न जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाईया गुर ब्राह्मण थे ओ मुआ ओ चढ़ पया वे तग्गा गया महला पहला लख चोरियां लख जारियां ला कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहे न मियां रात दिन सजी नाल तग कपाह हो कती है बामन वटे आए कोई बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मने पद उपजे सालाही सच सूत दरगे अंदर पाइए तग ना तूड़ सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी

आग तिनकर ब्राह्मण पूरे नाद ओ ना पे आवे ओई साद कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहार

हाथ शुरी जगत का साई, नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण, मलेश तान ले पूजे प्राण, अपाख्या का कुठा बकरा खाना, क्योंकि ऊपर कसे न जाना, देख चौका कड्डी कार, ऊपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, यो अन्न असाडा फिटे, तान फिटे फेड़ करेन, मन झूठे चुली परेन, कहो नानक सच त्याई है, सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी, चित्त अंदर सबको वेख नदरी हेड़ चलाएंदा, आपे दे वड्याईया आपे ही कर्म कराएंदा, वड्डो वड्डा वड मेदनी

पुतक जन बहु बव्या करना तंत मंत्र सब औखद जन अंत तउ मरना राज भोग अरशद्र सिंघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुभाषक चंदन अंत तउ मरना वेद पुराण सिमर सब खोजे।

तीन देव परतख तोर है करे किस की सेव पाखान गड़के मूर्त कीनी दे के छाती पाओ जे ए मूर्त सच

फिर पछताना बिरध पायो मेरी मेरी करते जन्म गयो सायर सोख भुजंग बलयो अरहाओ चूके सरवर पाल बंधावे लूणे खेत हथवार करे आयो चोर तुरंत ले गयो मेरी राखत मुग्ध फिरे चरण शीस कर कंपन लागे नैनी नीर असार बहे जेवा बचन सुध नहीं निगसे ताबरे तर्म की आस करे

साखी शब्द सुरत नहीं उबजे, खेंच तेई सब लीना, श्रवणन विकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थका, चरण रहे कर टर्क परे है, मुखो ननिक सह बसा, थाके पंच दूत सब तस्कर,

मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन तिरपुन डसियले गुर प्रसाद डीठी रहाओ। सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साज पछान्या तिन सरपनी खाई सरपनी ते आ

की आस करे जम निहारे ससा बारी गरी संसार कबीरा चेत टाल पासा आसा तन रैनी मन पुनरप कर हो

आस बड़ पाग हमारा, तुर नर मुन जन कौतक आए, कोट ते तीस उजाना, कह कबीर मोए ब्याए चले हैं, पुरख एक भगवाना, आसा सास की दुखी ससुर की।

करे लड़ाई माया सद मतवारी। बड़े पाई के जब संग होती तब हो नहा प्यारी। तहत कबीर पंच को चगर जगरत जन्म गवाया। झूठी माया सब जग बाध्या मैं राम रमत सुख पाया।

गुप्ता हीरा प्रगट पयो, जब गुर गमदिया दिखाई, आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी, सौरे पेये बुरी, आपकी स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी, पली सरी मोई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी, रहाओ कौ कबीर जब लौरी आई, बड़ी का सुहाग टरेओ, लौरी संग पई अब मेरे जेठी और तरेओ, आसा मेरी बौरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ, इन मुंडियन मेरा कर तुंदरावा, बिटवे राम रमो।

सूते सूत मिला एक कोरी, आसा अंतर मायल जे तीर्थ ना वे, तिस बैकुंठ न जाना, लोक पतीने कशु न होवे, नाही राम एयाना, पूजो राम एक ही देवा, साचा नामन गुर की सेवा, रहाओ, जल के मज्जन जेगत होवे,

संत अनंत अंतर नाही आसा, तुम चंदन हम इरंड बापरे संग तुम्हारे बसा। नीच रूख ते ऊज पए है गंध सुगंध निवासा, माधव सत्संगत शरण तुम्हारी हम अवगुण तुम्हें उपकारी। रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपील हम परे जस कीरा, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे।

निमत नाम दे दूध पी आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया। ज्ञान रविदास राम रंग राता क्यों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पुत्र कैसे नचत है देखे देखे सुने बोले दौरे फिरत है रहाओ। जब कछ पावे तब गर्व करत है माया गई तब रोमन लगत है। मान बद क्रम रस कसे लोभाना बिनस गया जाए कहूं समाना। कहे रविदास बाजी जग पाई बाजी गर सौ मोहे प्रीत बन आई। आसा बाणी भगत तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रामत फिरत बो जन्म बेलाने। तन मन तन नहीं तीरे लालच बिख काम लुभ राता मन बिसरे प्रभ हीरे। अरहाओ बिख बल मीट लगे मन बौरे चार विचार न जानिया गुणते प्रीत बड़ी अनपांती। जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं रिदे निवासी। जलत जाल जम फंद परे बिग पर संच परे मन ऐसे। परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरे तन दिया। ध्यान मान मन एक मये प्रेम भगत मानी सुख जानिया। तृप्त अगाने मुक्त पये जोत समाय समानी जाके असली प्रभ पहचानिया। तन्ने तन पाया तरणी तार मिल जन संत सुमानिया। महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद संग।

त्यागी माया। प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया, सैन नाई पुतकारी ओ कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म भगता मैं गनिया, ए बिद सुन के जट रो उठ भगती लागा। मिले परतख गुसाइया तन्ना वडभागा, रे चित चेतस की ना दयाल दमोदर। बिबे न जानस कोई जे तावे ब्रह्मंड खंड को, करता करे सोई अरहाओ। जननी केरे उदर उदकमय पिंड किया दस द्वारा, दे आहार अग्नमय रख ऐसा खसम हमारा। कुम्मी जल माहे तान तिस बाहर, पंख कीर्तन नाही पूर्ण परमानंद मनोहर। समझ देख मन माही पाखण कीट गुप्त होए रहता, ता चो मार्ग नाही। कह तन्ना पूर्ण ताहू को मात्रे जी डराही, आसा शेख फरीद जियो की बाणी। एक ओंकार सदगुर प्रसाद, दिलो मोहब्बत जिन से ही सत्या। जिन मन होर मुख होर ते कंठ

अंतर मैल न उतरे हो में बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। होड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी अरहाओ सात वेद सिमर सब सोधे सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त न को उपावे मन वेखो कर बिचारी अर सर मजन कर इस नाना परम आए तर सारी। अनक सोज करे दिन राती बिन सदगुर अंधियारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला

सागल सिट को तणी कही जय, जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई, हर कीर्तन आधारो। नाम दियो त्रिलोचन कबीर दासरो, मुक्त पयो चम्यारो। गुजरी महला पंजवा, है नाही को बूजन हारो। जाने कमन पता, शिव बरंज अर सगल मोन जान, गहे ना सकाहे गता। प्रभ की आगम

साध संग नानक दर्श पायो बिनस्यो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनक बो पाती।

गुजरी मोहल्ला पंजवां कभू हरस्यो चीत न लायो धंधा करत बेगानी औध गुणत नाम न ना गायो रहाओ कौडी कौडी जोरत कपटे अनक युद्ध करत हायो बिसरत प्रभ केते दुख गनिये मामो नी खायो करो अनुग्रह स्वामी मेरे गनो नाम होए कुमायो गोविंद दयाल कृपाल सुख सागर नानक हर शरणायो गुजरी महला पंजवा रसना राम राम रवंत छोड़ आन व्योहार मिथिया पसदा भगवंत रखाओ नाम एक आधार भगतां

आओ साध संग उधार एहो मन आठ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बक्सली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया।

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमण श्रमण अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण।

परे गुर शरण तुम्हारी मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो आद जुगा सिखाई। ऐ जी राखो पैज नाम अपने की तुझ की स्यों बन आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो किस रहे ना दिसै

साहे सदा संभालिए आपे बगसे करे रजाए से ही नच है जोत भाव है जे गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे।

काम क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरने वार धरणी तर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माय गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर स्मृत पल मुहूर्त

करती रसना शब्द सुहाई पूरे शब्द प्रा मिलया आई वड़पागिया वाहो वाहो मोह कढाई वाह वो करे सही जन सोने तिन को परजा पूजने आई वाह वाह कर्म प्राप्त होवे नानक दर सच्चे शोभा पाई पौड़ी बजक पाठ काया गढ़ पीतर कूड़क सत अभवानी परम फूले नदर न आवनी मानमुख अंध अज्ञानी उपाय किते ना लभनी कर पेख थके पेखवानी गुर शब्दी खोलाइन हर नाम जपानी हर जीव अमृत बिरख है जिन पिया ते तृप्तानी श्लोक महला तीजा वाह वाह करते हैं रैन सुख विहाए वाह वाह करते हैं सदा आनंद होवे।

अमृत नाम है गुरमुख पावे कोय वाव कर्मी पाई है आप दया कर दे नानक वाह वाह गुरमुख पाई है अनदिन नाम लए मोहल्ला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत न आवई दूजी नाही जाए जे बो तेरा लोचिए विण करमे ना पाया जाए जिन्ना अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुआए जमन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिन्ना सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तेन जम की तलब ना होवई ना ए दुख सहावे नानक गुरमुख उबरे सच्चे।

मन की कटिए मैल सत्संग उठिया जन मरण पौ कटिए जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाए छप इस्यो लायन रंग जेदी सब तारिया ऊंची ऊंचा थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास ते आई है जा आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है। श्लोक महला पंजवा बार विडानड़े होमस तुमस कूका पईया राही तौ सह सेती लगड़ी डोरी नानक अंध सेती बन गाही। महला पंजवा सची बैसक तिना संग जिन संग जपिए नाओ तिन संग संग न कीचई नानक जिन्ना अपना स्वाओ पौड़ी सावेला परवान जित सतगुर फेटिया होआ साधु संग फिर दुख न तेटिया पाया नेचल थान फिर गर्भ न लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह मेटिया तत ज्ञान।

शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता होए ता काहे डरपिए जिस मिल जपिए नाव तेजियो अर्पिए आए चित निहाल साहिब बेसुमार तिसनु पोहे कमन जिस वल निरंकार साब किश्त के वस न कोई बहारा सो भगता मन उठ सच समहारा तेरे दा ध्यान

क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट वासना निवार राख लियो प्रभे अपने नानक सरबरे हार महला पंजवा खांदिया खांदिया मोह कठा पय नंदिया सब अंग नानक त्रिग तिना दा जीवया जिन सच ना

कह किन बूझिए रमैया आकुल री बाई रहाओ। ज्यों आकाशे पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई, ज्यों जल माजे माचलो मार्ग पेखनो ना जाई। ज्यों आकाशे कड़ू अलो मृत सिना परया, नामे ते स्वामी बीठलो जिन तीन जरया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे कर तीजा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद दूता बशरे थनों बिटारियो। फूल पावर जल मीन बगारियो, माई गोविंद पूजा कहां ले चिरावो। आवर ना फूल अनूप ना पावो रखाओ, मैला गर बेरे गए पोयंगा। बेख अमृत बसे एक संगा, तूप दीप नहीं बेदे बसा। कैसे पूज करे तेरी दासा,

गोविंदेत जप नर सगल सिद्ध पदंग जय देव आयो तस सबटंग पाव भूत सर्वगतंग एक ओंकार सत।

पूजेगा। दह दिस खोजत हम फिरे मेरे लाल जियो, हर पायड़ा कर आए राम, हर मंदर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो, हर तिसमय रहा समाए राम, सर्वे सुमाना आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटया अंधेरा दुख नाठा आम्यो हर अस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जन कहे नानक सतगुर मिलाया।

तपत बुझाया राम। सबला सो दिनस रैने सुहावी, अंध मंगल रस कना। प्रगटे गोपाल गोविंद लालन,

जिन हर घर संजोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा, कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरे, अन दिन नाम खाना राम। अमृत बाणी उच्चना हर जस,

भगत मंगे हर भगत पाईए प्रभत आईए जाए मिल गए हर जना। मान मोह विकार तजिए अरप तन तन इहो मना बड़ पुरख पूरन गुण संपूरन प्रम पीत हर हर मिल फगै। बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे

तज ना जाई प्रप्रीत मन तन पानी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत पए किस कहन न जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मईल एक रव्या नै दूजा दृष्टाया बण त्रैण तिर पवन पूर पूरन कीमत कहन न जाई बिनवंत नानक आप जाने जिन ए बणत बनाई बिहागड़ा महला पंजवां खोजत संत फिरे प्रभ प्राण अधारे राम तान तन खीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रा मिलो प्यारे मया तारे कर दया।

कोड़ अपराध परे पी तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लिहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पिखत संग सब कै

आपे सुगड़ स्वरूप से आनी, अपना चोज कर वेखे आपे, आपे सबना जिया काहे जानी। श्लोक महला तीजा। एहा संध्या प्रवान है, जित हर प्रम मेरा चित आवे, हरसो प्रीत उपजे, माया मोह जलावे। गुर प्रसादी दुबदा मरे, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार, नानक संध्या करे मनमुखी जियो ना टिके, मर जम्मे हुए खुआर। महला तीजा। प्रयो प्रयो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास न जाए, नानक सब गुर मिले मेरी प्यास गई, फिर पाया कर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास पया, आपे दस अठ वर्ण उपायन, आ ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बगसे करे दया, आपे पुल न पुल्ले कभी, सब सच तपापस सच थया, आपे जिना बुझाए गुरमुख, तिन अंदरों दूजा परम गया। श्लोक महला पंजवा। हर नाम न सिमरे साध संग, तैतन उड्डे खेहे, जिन कीती तिसे ना जानई, नानक फिट अलूनी दे। महला पंजवा। खड़ बसते चरणार बिंद, रसना जपे गोपाल, नानक सोपरा सिमरी है।

राम राम करता सब जग फेरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाई, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द भेदया, एन बिद वसया मन आए। नानक आप अमेओ है, गुर कृपा ते रहया समाए। आपे मिलया मिल रहे, आपे मिलया आए। महला तीजा, ए मन यो तन नाम है। जित सदा सदा सुख होए, टोटा मूल न आवई। लाहा सदगी होए, खाद खर्चे तोट न आवई। सदा सदा ओ दे, सहसा मूल न होवई। हांत कदे न होए, नानक गुरमुख पाई है। जा को नदर करे पौड़ी, आपे सब कट अंदर, आपे ही बाहर। आपे गुप्त वर्तदा, आपे ही जहर। जो शक्ति गोबार कर, वर्त्या सुनहर। उथे वेद पुराण ना साहता, आपे हर नर हर। बैठा ताड़ी लाए, आप सब दूगी बार। अपनी मित आप जानदा।

हिंदू मूले भूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, ओए जा आव डुबे तुम कहा तरनहार, पौड़ी सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्म में आवंदा सब किस हुक्म में जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए, पौड़ी आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना।

निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन्म में जम करे खुवार, नानक सेवड़ भागी जिन घर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन मसाया, वढ़ांस महला तीजा, हौ में नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ, होमे सब शरीर है, होमे ओपत होए, होमे वड़ा गुबार है, होमे विच बुझ न सके कोए, होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, होमे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक को पव ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ठ पूछा कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित वेला विसरे मेरा स्वामी

हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वढ़हंस महला।

कोट कोट लख तावे एक तिल ताका मैल न पावे सुहावी कौन सो वेला जित प्रमेला रहाओ लाख भगत जा को आराध लाख तपीसर तब की साध

कहाओ सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृट सुजानी सचगुम तुम्हारा तत् निवासी आए ना जावे मेरा प्रभु विनासी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहेब परपुर लीना वढ़ंस मोहल्ला पंजवा तू बेअंत को बिरला जाने गुर प्रसाद को शब्द पछाणे सेवक की अरदास।

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप यो पाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूआवना, जो दे सहना मने कहना आखना ही मावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब यो पाइगे ने आप आपे नजर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मंग देख खसम पावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे, सब उपाय ने आप आपे नजर करे, वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाय आप आपे सर्व समाना,

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए हर वा पार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सत बैरागो ताचरते विचारी ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्या ई राम गुरमति हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच सवारण हारा पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहा सुमाई वढ़ांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो अपने कर तू सुख वस ओए न सके जम काल जियो काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए दूजे पाए परम विगुति मन मुकमोही जमकाल कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल मन मेरे अंत तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल जो पावे सो पूछ तू गुरमुख नदर निहाल गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सिखाई मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल नानक अंतर तेरे निदान है तू बार वस्त ना पाल मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई मनमुख माया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई होमे मार सच शब्द सुमाने सच रते अदकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्मड भागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वडभागे वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए ला भगत सह सारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधार वखर नाम सदा लाभ है जिसनु एत वापार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा यो वापार राम कूड़ बोल बिकामणी बहु वदे विकारा राम बहु वदे विकारा सहसा यो संसार बिन नावे पद खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वकाने बिन बूझे सुख ना होई आमन जाना कदे ना चूके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है।

ठाकुर मेरे केत मुख तुलसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सलिया खिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई, वाजे अनगल तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगलब सूरे, सलोक क्या सुनिंदो कूड़, वंजन पमन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान, जो सुनिंदे सच तनी, शंत तिन कोल कुमाई, जिन प्रसरमणी सुनिया राम, से सह सुहिले, जिन हर गरसना पणिया राम, से सह सुहिले गुणे अमूल्य, जगत उधारने आए, भय बोच सागर।

गई वजाए जो असमान ना मावनी तिन नक नथा पाए जे मन जाने सूलियां काहे मिठा खाहे नानक औगुण चेतड़े।

प्रभाते हरसना जप मन रे तुम साचे हम तुम ही राचे शब्द भेद फुन साचे ऐनस नाम रते से सूचे मर जन में से काचे अवर ना दिसे किस सालाही किसे सरीक न कोई प्रणत नानक दासन दासा गुरमत जान्या सोई सोरठ महला पहला अलख अपार अगम अगोचर नाथ से काल न कर्मा जात अजात अजोनी संपो नाथ से पाओ न परमा सचे सचियार मिटो कुर्बान नाथ से रूप वर्ण नहीं रेखिया सचे शब्द निशान रखाओ नाथ से माद पिता सुध बंधव नाथ से काम न नारी अकोल नरंजन अपर परंपर सगली ज्योत तुम्हारी कड़कड़ अंतर ब्रह्म लुकाया कड़कड़ ज्योत सबाई बजर कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय ताड़ी लाई जंत उपाय काल सिर जनता वस गत जुगत सुबाई सदगुर से पदार्थ पावे टूटे शब्द कमाई सूचे पांडे साच समावे विरले सूचाचारी तंते कौ परम तंत मिलाया नानक शरण तुम्हारी सोरठ महला पहला जो मीना बिन पानी है त्यों सागत मरे प्यास त्यों हर बिन मरिगे रे मना जो बिरथा जावे सास मान रे राम नाम जस ले बिन गुर यो रस क्यों लहो गुर में ले हर दे रहाओ संत जिना मिल संगति गुरमुख तीर्थ होए अड़सर तीर्थ मजना गुर दर्श प्राप्त होए ज्यो जोगी जत बारा तप नाही सत संतोख त्यों नामे बिन दिहोरी जा मारे अंतर दोख साकत प्रेम न पाईए हर पाई गे सदगुर पाए सुख दुख दाता गुर मिले कहो नानक सिफत सुमाए।

लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई, मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई, पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई। गुर कह गेत अपार, आया सो प्रवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई गे पाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, ती गुणी तिरपुण व्यापिया पाई, गुरमुख बूझ बुझाए।

तेरे मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रखाओ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुरसरणाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला, सदगुर सुख सागर जग अंतर होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले।

अंडज जेरज सेत उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूत तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सबत है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

सब जग मछली हर आपे, आप फुल न फुल ही प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तब तापे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हारस तापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तोल तोलाया, आपे सौ आपे वणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निधान।

कहियत तिन में उर्जो सगल संसारा, पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोग ते न्यारा। निंदो नाही काहू बात, यो खजम का किया, जाको कृपा करी प्रा मेर है, मिल सा संत नौ लिया। पार ब्रह्म परमेश्वर सदगुर सबना करत उधारा, कौ नानक गुर बिन नहीं तरिय, यो पूर्ण तत् विचारा। सोरठ महला पंजवा, खोजत खोजत खोज बिचार्यो, राम नाम ता सारा, किलभ काटे निमख आराध्या, गुरमुख पार्यो तारा। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी, सुन सुन महा तृप्त मन पावे, साधु अमृत बानी रगाओ। मुगत भुगत जुगत सज पाई गे, सर्व सुखां का दाता, अपने दास को भगत दान देवे, पूर्ण पुरख विधाता। श्रमणी सुनिए रसना गाइये, हृदय त्याइये सोई, करण कारण समरथ स्वामी, जाते बिरथा ना कोई। वडे भाग रतन जन्म पाया, करो कृपा कृपाला, सा संग नान गुण गावे, सिमरे सदा गोपाला। सोरठ महला पंजवा, कर इसनान सिमर प्रव्यापना, मन तन पय अरोगा, कोड विघ्न लाते प्रसरणा, प्रगटे पले संयोगा। प्रबाणी शब्द सुपाखिया, गावो सुनो पढ़ो निदफाई, गुरपूरे तू राखिया रहाओ। साचा साहेब अमित वडाई, भगत वशल दयाला, संतां की पैज रखदा आया, आद बिरद प्रतपाला। हर अमृत नाम भोजन नित पुंचो, सर्व वेला मुख पावो, जरा मरा ताप सब नाठा, गुण गोविंद नित गावो। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्व कला बण आई, प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सोरठ महला पंजवा, कार दूजा चौपदे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। एक पिता एक के हम बारिक, तू मेरा गुरहाई, सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी, हर दर्शन दियो दिखाई। सुन मीता तूरी कौ बल जाई, यो मन तेरा पाई। रहाओ पा मलोवा मल मल तोवा, यो मन ताए को दिशा, सुन मीता हो तेरी शरणाई आया। प्रा मिलो

तुम सबसा जे सा जनेवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुनियारे गुण नहीं कोई तुम दान दे मेहरबाना तुम करो भला हम पलो न जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विधाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम ए हवाला राग संतन कै

तू दाता मांगन को सगली दान दे प्रापन खिर मैं अवर खिने मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूड़ो गूड़ो गैर गंभीरो ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी अंध पया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी। सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरणा संत हमारी ओर सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखे आप पाई।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रहाओ ताम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाई है हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाई है काल न पाने अंतर विध जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा ना वर्तन ना मुवा लेवा नाम नानक प्राण अधारा सोरठ महला पंजवा मृतक को पायो तन सासा विशिरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते हर नामा मोह गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकि कीमत कहन न जाई हरहाओ दू सो का टायो डेरा अंत मंगल बिसरामा मन बांचित फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा ईहा सुख आगे मुख उजल मिट गए आवन जाने निरपो पै हृदय ना मसिया अपने सदगुर के मन पाने उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द परम्पा।

अघाई जद कद पूर रहो परमेश्वर कत आवे कद जाई जाप तब संजम ज्ञान तद बेता जिस मन वसे गोपाला नाम रतंजन गुरमुख पाया ताकि पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले

गुण गावत आराध नाम हर, आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत, संगत साध प्यारी सब बलिहार जाओ प्रभ अपने, जिन पूर्ण पैज सवारी, गोष्ठ ज्ञान नाम सुन उधरे, जिन जिन दर्शन पाया, पयो कृपाल नांग प्रभ अपना, हंद से ती कर आया। सोरठ महला पंजवा, प्रभ की सारण सगल पैला थे, दुख बिन से सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी,

कर कृपा अपनो कर लीना। मनव से अविनाशी ताको बिघन न को लागे, जो सदगुर अपने रखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हरस जाके। हर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवां माया मोह मगन अंधियार है दे

जो करे सोई सोई जाने रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वात लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह पर दारा संग फक है, चित्र गुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पड़दा तेरा ठाक। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन तुम बिन ओट न काई, काढ़ लियो संसार सागर में नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई गुरपूरे की बाणी। जपंद करो नित प्राणी हर साचा सिमर हो पाई, साध संग सदा सो पाई है हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे, जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन गुर चरणी मन लागा, गुण गाव अजुत अविनाशी आनंदन हारंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए हर की कड़ा सुहेली, आद अंत मद नानक तो प्रभु हुआ बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपनी तारी संत या बताव होकारी। जित हो में गर्भ निवारी रखाओ, सर्व भूत पार ब्रह्म करमानिया होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे चूके पीत परमारी, औखद नाम निर्मल जल अमृत पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया तिस गुर मिले रोग बिदारी। सोरठ

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापद, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछे, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारे, दर्शन पीड़ित होत निहाला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर आ

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो न पति आया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रघाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कते आवे कद जाई ते साच न्याए नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्वथान को राजा ते अनहर शब्द अगाजा।

बात सवारी। प्रभ अपना बिरध समारिया, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया, गुर का सद पयो साखी, तिन सगली लाज राखी। बोलाया बोली तेरा, तू साहिब गुणी गहेरा, जप नानक नाम सा साखी, अपने दास की पैज राखी। सोरठ महला पंजवा, विधकर्ता पुरख खलोआ, वाल ना विंगा हुआ, मज्जन गुर अंधा रासे, जप हर हर किल खनासे।

नहाए आए अपना प्रभु त्याए संत सरोवर नहावे खोजन परमगत पावे मरै न आवे जाई हर हर नाम त्याई जो ब्रह्मचार सो जा

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सदार खवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जमका पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वैसे वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पनवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मिले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रदपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख विधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुर्बाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिलका कोई कार्य सगल सुवारे हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पादत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मान बांछित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दैद सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैने फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रोम आयो ए कोसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ क्यों बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होम में पीत गुर खोई तो दयार बीठ लो पायो तब रहो अंधेश्वरो मायो जो चाहत सो गुरु मलायो सर्व

शीतला ठाक रखाई बिघन गए हरनाई। मेरा प्रभु वसदा दयाला अरदास सुनी भगत अपने की, हव जी भया कृपाला रहाओ प्रभ करण कारण समर्था हर सिमरत सब दुख।

ठगोरी लाती संग मिला लिया मेरे करत संत साध पैसा थी कर गए लीने सर्पस दीने आपे आप मिलाया को नानक सर्व

संतन के कार्य सगल सवारे, दीन दयाल कृपाल कृपा निध, पूर्ण खसम हमारे रघाव। आओ बैठ आदर सवताई, ऊ न कतहू बाता, भगत सिर पाओ जीव जने अपने, प्रताप।

परमतहारो हस्तर मत नहीं पाई, मान दे पाए पद हर पद। नानक बात बताई सोरठ महला नामा, मन रे प्रभु की शरण विचारो, जे सिमरत गणकासी उदरी, ताको जस उर तारो रघाओ। अटल भयो त्रू जाके सिमरन, हर निरपय पद पाया, दोखरता ए विद को स्वामी, तय काहे बिसराया। जब ही शरण गही कृपा निध, गज ग्रह ते छूटा, महिमा नाम कहाँ लो बरनो, राम कहत बंधन ते टूटा। अजामल पापी जग जाने, निमुख मय निस्तारा, नानक कहत चेत चिंता मान, तय

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्म ताके सब नाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई, सोरठ महला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निसबासर न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण राख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, जिस बासर दिखेन को तावत हे बिदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यो बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो तू इतने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जबगी शरण साध की आयो दुर्म सगल बिनासी।

सुआन पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर नज पोखयो पस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं मान थोक सुने वर पह नहीं जा कह संचन माटी मान है रगाव नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

सहज पियाई। दुबधा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई, सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई, अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग, मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहामंग, कर्म सुकर्म कराए आपे आपे पवित्र रामंग, मान मुख जूठ लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग, जिन चाख से साध जानन, ज्यो गुंगे मिठे आई, अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई, गुरदाता मिले तामत होवे, निगुरे मत ना काई, ज्यो चलाए त्यो चले पाई, होर क्या को करे चतराई, एक परम पुलाए एक भक्ति राते, तेरा खेल अपारा, जित तुद लाए तेगा फल पाया, धुंग चला मनहारा, सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा, सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा। गगन अंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान त्यानंग, ना मन पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खानंग, सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरानंग, पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानंग।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझ ही ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो आखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सुम बैरागिए पाई दार कर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजगे पाई ही मैला तन होय ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होय देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुर बिन अलख न लखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदकस के लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

भगत जिना कै संग पाप गुवावना जन नानक सद बलिहार बल बल जावना। श्लोक मोहल्ला चौथा। अंतर अज्ञान पई मत मध्यम सदगुर की प्रतीत नाही। अंदर कपट स कपटो कर जाने कपटे खपे खपाही। सदगुर का पाणा चित न आवे अपने सुहाए फिराही। कृपा करे जे अपने का नांग शब्द सुवाही। महला चौथा। मनुख माया मोहे आपे दूजे पाए मनुआ थिर नाहे। अनदन जल रह दिन राती होमे खपे खपाहे। अंतर लोभ महा गुबारा तिनके निटना कोई जावे। कोई आव दुखी तो कभू ना पावे जन्म मरे मर जाहे। नानक बख्श लहे प्रसाचा जे गुर चरणी चित लाहे। पौड़ी। संत भगत परवान जो प्रापाया सही बचखण जंत जिनी हरत्याया। अमृत नाम निधान भोजन खाया संत जना की तूर मस्तक लाया। नानक पय पुनीत हर तीर्थ नाया। श्लोक महला चौथा। गुरमुख अंतर शांत है मन तन नाम समाये। नामो चित वे नाम पढ़े नाम रहे लिव लाए। नाम पदार्थ पाया चिंता गई बलाए। सदगुर मिले नाम उबजे तिसना पुख सब जाए। नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए। महला चौथा। सदगुर पुरख जे मारिया परम परमिया कर छोड़ गया। ओस पिछे वजे फकड़ी मोह काला आगे पया। ओस अरल बरल

अब बेगल कह न जाई। हमारा परम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा। रहाओ बाजीगर डंक बजाई, सब खलक तमाशे आई। बाजीगर स्वांग सकेला, आपने रंग रवे अकेला। कथनी कह परम न जाई, सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हिरदे रहा सुमाई। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता, मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बलोमन को माटा। ताकी हो बलोमन हारी, क्यों मिटैगो शाश तुहारी। चेरी तू राम न करस पतारा, जग जीवन प्राण अधारा। रखाओ तेरे गले ताओ पगबेरी, तू घर घर मैये फेरी। तू अजो न चेत तेरी।

अनमड़िया मंदल बाजे मेरे सामन कनहर गाजे बादल बिन बरखा होई जाओ तत विचारे कोई मोको मेरे ओ राम स्नेही जे मिले देश सुदेही रखाओ मिल पारस कंचन होया मुख मनसा रतन परोया ये पाओ गया परम पागा गुर पूछे मन पति आगा जल पीतर कुंभ समानिया सब राम एक कर जानिया गुर चेले है मन मानिया जन नामे तत पछानिया राग सोरठ बाणी भगत रविदास जी की एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद जब हम होते तब तू नाही अब तू ही मैं नाही अनल अगम जैसे लहर मैं ओदध जल केवल जल माही माधवे क्या कहिए प्रमेयस जैसा मानेंगे होए न तैसा रहाओ नरपद एक सिंहासन सोया सुपने पया पिकारी अशतराज बिशरत दुख पाया सो गल पई हमारी राज पुयांग प्रसंग जैसे है अब कछ मर्म जनाया अनक कटक जैसे पूर परे अब कहते कहन न आया सर्वे एक अनेक स्वामी सब कड़ भुग सोई कहे रविदास हाथ पहने रह सहजे हुए सुहोई जो हम बांधे मोह फास हम प्रेम बंधन तुम बांधे अपने शूटन को जतन करो हम शूटे तुम आराधे माधवे जान हो जैसी तैसी अब कहां करोगे ऐसी रहाओ मीन पकर फांक्यो अर काट्यो रांद कियो बहुबानी खंड खंड कर पूजन कीनो तउ न बिसरो पानी आपन बापे नाही किसी को पावन को हर राजा मोह पटल सब जगत व्याप्यो भगत नहीं संतापा कहे रविदास फलक एक बाडी आप हे कासु कहिए जा कारण हम तुम आराधे सो दुख अजहू सही दुलाभ जन्म पुण्य फल।

राजा राम को रस जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असो दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी बसे बिचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा, रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन होए को पसम की ठेरी, ऊंचे मंदर सुंदर नारी, आराम नाम बिन बाजी हारी, मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा, तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास तुम्हारा, चमरटा गांठ न जनई।

सास मास तब जियो तुम्हारा तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एव कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइये पुरब लिखे का लहना, नाम खसम का चितन किया कपटी कपड़ कमाना। जाम द्वार जा पड़ चलाया ता चलदा पछताना। जब लग दुनिया रही गई नानक किस सुनिए किस कहिए, पाल रहे हम रहन न पाया जीव ते हम मर रही है। तना श्री मोहल्ला पहला कर दूजा एक ओ अंकार, सतगुर प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए। तप हे आओ जीड़ा बिल लाए, फिर जसवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए। हिकमत हुक्म न पाया जाए क्यों कर साथ मिलो मेरी माए रखाओ। वखर नाम देखण कोई जाए ना को चाखे ना को खाए, लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए। जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए, जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए। हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह दिसा गुण नहीं नाल, जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोए। तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिवलाए। आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागे तिरकाल ना खाए रहाओ। सच सिमरिया होवे प्रगास ताते बिखिया महे उदास, गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई। ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे, साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगे पावे मान। सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई बल पाए, साचा साहिब कृपा करे सो सेवक जमते कैसा डरे। पंत नानक करे विचार साची बाणी सो तरे प्यार, ताको पावे मुख द्वार जब तब सब इहो सब जगह सार। तना श्री मोहल्ला पहला जियो तब है बारो बार, तब तब खावे बहुत बेकार। जय तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी बिल लाए, बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सोए रहाओ। जिन कन कीते अखी नाक जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिन मन राख्या अग्नि पाए वाजे पावन आखे सब जाए। जेता मोह प्रीत स्वाद सभा कारख दा गादा दाग दोष मुझ चलिया।

होए खरा खरा आखे सब कोए रहाओ। कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया खाए। जोगी जुगत न जाने अंध तीने उजाड़े का बंद। सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी एको जाने। काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवित मरे। तो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे। दान सबन सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे। पढ़िया बूझे सो परवान जिस

पूजे जन सोए जिस नु बख्शे हर देव डयाई गुर प्रसाद वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मान मै मत मैं गल मिगदारा गुर अंक समार जी वालनहारा मन असाध साधे जन कोई अज चरे ता निर्मल होई गुरमुख इहो मन लया सवार होमे विचों तद विकार जो तुर रखे न मेल मिलाए कदे न विछड़े शब्द समाए अपनी कला आपे प्रभ जाने नानक गुरमुख नाम पछा।

साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच ला

अदृष्टा गोचर अपरंपर स्वामी पुर पूरे प्रगट कर दीने। राम पास चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सत संग पए हर कंचन चंदन कीने रहाओ। नाव शेख खट बोले मुख आगर

कंडो अनकबीरी समझावो हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम की सजन सुहेले रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना

दुतिया पाओ निवार, बंधन काट लेओ अपने कार, कभू न आवे हार। तेरी शरण पया हो जीवा, तू समरथ पुरख मेहरबान, आठ पहर प्रभु को आराधी, नानक सद कुरबान। राग तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हा हा प्रभ राख ले हो, हम ते किशु ना होए मेरे स्वामी, कर कृपा अपना नाम देहो, हराओ अगर कुटुंब सागर संसार।

पेटे जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोय धारी ओड़ गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल रहाव, सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल ब्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाना।

स्वामी सा मसलत प्रवान रघाओ पद परमेश्वर गत नारायण तन गोपाल गुण साखी चरण सरन नानक दास हर हर संति ए बिद जाती तनासरी महला पंजवा सगल मनोरथ प्रभते पाए कंठ लाए गुर रखे संसार सागर में जलन न दीने किने न दुत्तर भाखे जिन कै मन साचा विश्वास पेख पे स्वामी की शोभा आनंद सदा उलास रहाओ चरण सरन पूर्ण परमेश्वर अंतर जामी साखेओ जान बूझ अपना कियो नानक भगतन का अंकुर राखेओ तनासरी महला पंजवा जय जय पेखो तय हजूर दूर कत हो ना जाई रब रहया सर्वत्र मैं मन सदा त्याई ईत ऊत नहीं बिछड़े तो संगी गनिये बिनस जाए जो निमुख मैं तो अल्प सुख भनिये रहाओ प्रतपाले अप्याओ दे कश ऊन न होई सास सास संभालता मेरा प्रसोई आशल अशेर अपार प्रभ ऊंचा जाका रूप जप जप करे आनंद जन अचरज आनूप साम देव दयाल प्रभ।

फलो हर मंगना, देखो पसार नयन, सुनो साधु के बयन, प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ, चंदन चो अरस पोग करत अनेक, विखिया विकार दिख सगल है फीके, एक गोविंद को नाम नीको, कहत है साध जन, तान कन अपन थाप्यो, हार जप न निमुख जाप्यो।

संग नाही चलना, या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पला, तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना, पायो रे परम धान मिट्यो हुए अवमान, एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, कल कलेस लो मोह मा पौजल तारे रहाओ, सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, ताल संग जपन संग मन निधान तारे, चरण कमल नमस्कार कुन गोबिंद बिचारे, ताजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे, तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास माले, हे लोक परलोक संग सगाई जद कदम होए रखवाले, गुर का बचन बसे जी नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, पाए ना साके जाले, हरहाओ निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक, मार दूध जैसे बाले, सागर मैं भोज पायो हर नानक करी कृपा कृपाले, तनाश्री महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय संचाई नाम निध रिद सिद्ध, हर लागर ही जन पाई, संतन को आनंद सगल ही जाई, गृह बाहर ठाकुर भगतन का हरावर या सर्वठाई रखाओ, ताको कोई ना पहुंचे नकारा, जाके अंग कुसवाई, जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई, तनासरी महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ, पूमवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा, त्यो हर जन टेक स्वामी, जे को अपने ओट समारे, जैसा बित तैसा होए वर्त, अपना बल नहीं हारे, हरहाओ आन त्याग पै इक आसर, शरण शरण कर आए, संत अनुग्रह पै बन निर्मल, नानक हर गुण गाए, तनासरी महला पंजवा जाको हारंग लागो इस जुग में, तो कई तगै सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता के जाका सदगुर पूरा, ठाकुर गाई गे आत्म रंग।

शरण गए प्रभ अपने, सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवा, पर हर ना लोभ चूड निंद, ए भी करत गुदारी। मृत सिंह आस मिथ्या मीठी, ए टेक मने साधारी। सागत की आवरदा जाए बिरतारी, जैसे कागद के पार मूसा टूक गवाव। काम नहीं गावारी रहाओ, कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी, ए बंधन छुटकारी। बूढ़ अंध नानक प्रकाड, साध जना संगारी। तनासरी महला पंजवा, सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना। शीतल तन मन शाती, रूप रंग सुख तन जी का। पार ब्रह्म मोरे जाती, रसना राम रसायन माती। रंग रंगी

जामह रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोर सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यांत प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पनवा मांगो राम ते सब थोक मार्ग को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव सज पाइये दोवे सुहेले लोक आन अचार व्यवहार है जेते बिनखा सिमरन फोक नानक जन्म मरण पै काटे तिन साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा बुझे हर कै नाम मां संतोख होवे गुरबचनी प्रस लागे पूर्ण ध्यान रहाओ मां कलोल बुझे माया के कर कृपा मेरे दीन दयाल अपना नाम दे जप जीवा पूर्ण होए दास की काल सर्व मनोरथ राज सुख रस सद खुशियां कीर्तन जप नाम जिसके कर्म लिखिया तुर करत नानक जन के पूर्ण काम तनासरी महला पंजवा जन की कीनी पार ब्रह्मसार निंदक टिकन न पावन मूले उड़ गए बेकार अरहाओ जय जय देखो तय तय स्वामी कोई न पहुंचे नहार जो जो करे अवग्या जन की होए गया तत्सार करन हार खवाला होवा जाका अंत न पारावार नानक दास रखे प्रभ अपने निंदक काढ़े मार।

सूवे पतत उदाहरणा जी जंत तारणा वेद उच्चारण अंत पायो गुणे सुख सागरा ब्रह्मत नागरा भगत वच्छल नानक गायो तनासरी महला पंजवा हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो।

गगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तना श्री मोहल्ला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रखाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अनदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का मार्ग हृदय निहारी मन तन अंतर चरण त्याया हर सुख निधान नानक दास पाया तना श्री मोहल्ला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद सागर जिन खिन में तारा रहाओ कोई हुआ क्रम रत कोई तीर्थ नाया दासी हर का नाम त्याया बंधन काटन हर स्वामी जन नानक सिमरै अंतर जामी।

त्याग बपड़ा छपड़ी नाए कीचड़ डूबे मैल न जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी दुबदा छोड़ पए निरंकारी मुगत पदार्थ हरस चाखे आमन जान रहे पुर राखे सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मैं हंस हंस मैं सागर अकत कथा गुर बचनी आदर सुन मंडल एक जोगी बैसे नार ना पुरख कहो को कैसे तिर पवन जो तरहे लिव लाई तुर नर नाथ सचे सरनाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज बिचारी भगत वशल पे काटन हारे होमे मार मिले भगतारे आनक जन कर काल संताए मन न लखाए मंडल में आए जन्म पदार्थ दुबधा खोवे आप न चीनस प्रम प्रम रोवे है तो पढ़तो सुन तो एक तीर्ज धर्म तरणी तर टेक जात सा संजम हृदय समाए चौथे पद को जे मन पति आए।

भगत ब्राह्मण पति आया पड़ पड़ फूले चोटा खावे बहुत सियाण आवे जावे नाम जपे पौ भोजन खाए गुरमुख सेव करे समाए पूज सिला

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई, प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी। नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी, फिर कर सोहे नार।

कदे ना विसारी अन दिन सुमारी जा नाम लई ता जीवा श्रवणी सुनी ता यो मन तृप्त गुरमुख अमृत पीवा नदर करे ता सतगुर मेले अन दिन विवेक बुद्ध विचरे अंदर साचा ने हो पूरे सतगुर सत्संगत मिले वड़भाग ता हरस आवे जियो आन दिन रहे लिवलाए ता सहज समावे जियो सहज समावे ता हर मन पावे सदा अतीत बैरागी पलत पलत सोभा जग अंतर आराम नाम ले लागी हरख सोग दोहा ते मुक्ता जो प्रव करे सो भावे सत्संगत मिले वड़भाग ता हरस आवे जियो दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो हाय हाय करे दिन रात माया दुख मोया जियो माया दुख मोया हो मेर होया मेरी मेरी कर्तव्य खावे जो प्रव दे ते चेते नाही अंत गया पछतावे तिन नावे को साथ ना चाले पुत्र कलत्तर माया तोया दूजे पाए दुख होए मन मुख जम जोया जियो कर कृपा लियो मिलाए महल घर पाया जियो सदा रहे कर जोड़ ब्राह्मण पाया जियो ब्राह्मण पावे ता हुक्म समावे हुक्मन सुख पाया अनदन जपत रहे दिन राती तेजे नाम त्याया नामो नाम मिली वड्याई नानक नाम मन पावे कर कृपा लियो मिलाए।

पंजनों जियो, दुख हर्त करता सुखे स्वामी, चरण साधु आया, संसार सागर महा बिखड़ा, पाल एक महे तराया, पूरे या सर्वताई, गुर ज्ञान नेत्री अंजनों, बिनवंत नांग सदा सिमरी, सर्व दुख पय पंजनों, आप लिगे लड़ लाए, कृपा तारिया जियो, वे निर्गुण नीज अनाथ, प्रभ अगम अपारिया जियो, दयाल सदा कृपाल स्वामी, नीचता पणहारिया, जी जनसा वस तेरे, सगल तेरी सारिया, आप करता आप भुगता, आप सगल बीचारिया, बिनवंत नान गुण गाए जीवा, हर जप जपो बनवारिया, तेरा दर्श अपार,

के नीव खुदाई ऊपर मंडप छाए मारकंडे ते को अदकाई जिन त्रेण थर मूंड बलाए हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्व करत हो बिरस जाए झूठी देही हरहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई पारे जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई सर्व सोयन की लंका होती रावण से अदकाई कहां पयो दर बंदे हाथी खिर में पई पराई दुर्वासा करत ठगोरी यादव ए फल पाए कृपा करी जने अपने ऊपर नाम जो हर गुण गाए तस बय रागन मोए बस कीनी पंचो का मिट नावो सत्र दोए परे अमृत सार बिख को मार कढावो पाचे बौर न आवन पावो अमृत बाणी कढ़ते उचरो आत्म को समझावो रहाओ बजर कुठार मोए है शीना कर मिनत लग पावो संतन के हम उल्टे सेवक भगतन ते डर पावो ये संसार ते तब ही छूटो जो माया नहीं लपटावो माया नाम गर्भ जोन का ते ता दर्शन पावो इत कर पगत करे जो जान तेन पौ सगल चुकाइये कहत नाम दो बार क्या परम हो ए संजम घर पाइये मार वाड़ जैसे नीर बाल बेल बाल कर ज्यो कुरंक निसनाद बाल त्यो मेरे मन रामैया तेरा नाम रूड़ो रूप रूड़ो अतरंग रूड़ो मेरो रामैया अरहाओ जो तरणी को इंद्र बाल कुसुम्बा जैसे पवरला ज्यो कोकल को अंब बाल त्यो मेरे मन रामैया चकवी को जैसे सूर बाल मान सरोवर हंसला ज्यो तरणी को कंत बाल त्यो मेरे मन रामैया पार्ग को जैसे खीर बाल चात्रक मुझे से जल थरा मछली को जैसे नीर बाल त्यो मेरे मन रामैया साधक सिद्ध सगल मुन चाह है बिरले काहू डीठला सगल पवन तेरु नाम बाल त्यो नाम में मन बीठला पहल पुरगे पुंडरक वना ताचे हंसा सगले जना कृष्णा ते जानऊ हर हर नचंती नाचना पहल पुरसा बिरा अथोन पुरसा दमरा असगा अस उसगा हर का बागरा नाचे पिंदी मैं सागरा हरहाओ नाचंती गोपी जन्ना नैया ते बैरे कन्ना तर्क नाचा प्रमिया चा

किरपयो दर्शन देखे, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी तुजस पूर राखो, मन सुमद कर करो चरण हिरदे धरो, रसन अमृत राम नाम पाखो, मेरी प्रीत गोबिंद सिंह जिन कटे, मैं तो मोल महगी लई जी सटे, परहाओ सा संत बिना पाओ नहीं उपजे, पाविन भगत नहीं होए तेरी, भैरव दास एक बेनती हरस्यो, पैज रखो राजा राम मेरी, नाम तेरो आरती मजन मोरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासारे, अरहाओ नाम तेरो आसनो नाम तेरो उरसा, नाम तेरा केसरो ले छिटकारे, नाम तेरा अंबला नाम तेरो चंदनो, जपे नाम ले तुझे कोचारे, नाम तेरा दीवा नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माए पसारे, नाम तेरे की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तुही चबर ठोलारे, दस अठा अड़सठ चारे खानी, एह वर्तन गए सगल संसारे, कहे रवदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे, तनास

जंगम जाती तायो तूप दीप नहीं बेदा तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ

राम जैतसरी महला चौथा रस रस राम रसाल सलाहा मन राम ना पीना लय लाहा तिन किन भगत करे दिन राती गुरमत भगत ओ महाराम हर हर गुण गोविंद जपाहा मन तन जीत शब्द लय लाहा गुरमत पंच दूत बस आवे मन तन हर ओ महाराम नाम रतन हर नाम जपाहा हर गुण गाय सदा लय लाहा दीन दयाल कृपा कर माधो हर हर नाम ओ महाराम जप जगजीत जपो मन माहा हर हर जगन्नाथ जग लाहा तन तन वड्डे ठाकुर प्रा मेरे जप नानक भगत ओ महाराम जैत सरी महला चौथा आपे जोगी जुत जुगा।

जाको जोगी खोज तहारे पायो नाए ते पारा। तो स्वामी तुम निट पछानो रूप रेख ते न्यारा, पाम नाम जगत में हर को कभू नाए संभारा। नानक सरण पर्यो जग बंधन राखो बिरध तुहारा, जय तसरी महला पंजवा। शांत कर पहला एक ओंकार सदगुर प्रसाद, श्लोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नीत, खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संगमीत। शांत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, इस मोहन लाल प्यारे हों फिरो खो जंतिया। ते दस प्यारे सिर तरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे, नैन हमारे प्रे रंग रंगारे एक तिल फीना थीरीजे। प्रसो मन लीना ज्यो जल मीना क्या तक जिवें तसंतिया, जन नान गुर पूरा पाय तगली तिखा बुझंतिया। यार वे प्रे हब्बे सगिया मूह कई ना जइया, यार वे एक डू एक चाड़े होके चेतिया। एक डू एक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बिलासा, तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुणतासा। किन्नी मैंडा लाल रीझाय हौत आगे मन डेइया, नानक कहे सुन बिनो सुहागन मूंद डिखा पिर कहिया। यार वे पिर आपन पाणा किश नी सी छंदा, यार वे तेरा व्या लालन मूह तद संदा। लालन ते पाया आप गवाया चेतन भाग मथाने, बा पगड़ ठागर हो कि दी गुण अवगुण ना पछाने। गुण हार ते पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो के सुहंदा, जन नानक तन सुहागन साई जिस संग पतार वसंदा। यार वे नित सुख सुखेंदी था मैं पाई, वर लोड़ी दा आया वजी वाधाई। महा मंगल रहसतिया फिर दयाल सदना वरंगिया, वड भाग पाया गुर मिलाया साधके सत्संगिया। आसा मनसा सगल पूरी प्रे अंक अंक मिलाई, बिनवंत नान सुख सुखेंदी सा मैं गुर मिल पाई। जय तसरी महला पंजवा। कर दूजा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्लोक ऊंचा अगम अपार प्रभ कसन न जाए अकथ, नांग प्रसरणागति रखन को समरथ। शंत जो जानो त्यों राख हर प्रो तेरिया, केते करो असंख अवगुण मेरिया। असंख अवगुण खते फेरे नित प्रसर फूलिए, मोह मगन विकराल माया तो प्रसादी फूलिए। लोक करत विकार बिखड़े प्रभ नेर हूते नेरिया, बिनवंत नान दया तारो ताड़ पव जल फेरिया। श्लोक निरतन पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का ना हो, नानक की बेनतिया मिले न थावे थाओ। शंत दूसर ना ही ठाओ का पै जाइये, आड़ पैर कर जोड़ तो प्रत्याइये। चाहे सो पर सदा अपना मने चिंदया पाइये, तजमान भो विकार दूजा एक स्यो लिव लाइये। अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइये, बिनवंत नानक तार कृपा साज नाम समाइये। श्लोक रे मनता को त्याइये सब जाके हाथ, राम नाम तन संचिये नानक निधे साथ। शंत साथीड़ा प्रप एक दूसर ना गे कोय, थान तनंतर आप जल थल पूर सोय। जल थल महील पूर रहे सर्वदाता प्रभ तनी, गोपाल गोविंद अंत नाही प्यंत गुणता के क्या गनी। पर शरण स्वामी सुख है गामी तिस बिना अन नाहे कोय, बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होय। श्लोक तिद जे चितवया सो मैं पाया, नानक नाम त्याय सुख सुबाया। शंत अमन छूट गया साधु संग मिले, गुरमुख नाम लया ज्योति जो तरले। हर नाम सिमरत मिटे किल बिख बुझी तप्त अघानिया, कह पूजा लीने दया कीने अपने कर मानिया। ले अंक लाए हर मिलाए जन मरना दुख जले, बिनवंत नांग दया तारी मेल लीने एक पले। जैत सरी शंत महला पंजवा। पाधाणु संसार गर्व अटिया, करते पाप अनेक माया रंग रटिया।
लोभ हुए अभिमान बूढ़े मरण चीत न आवे पुत्र मित्र व्यवहार बनता हे कर्त बिहावे कुछ दिस से आए लिखे माए दुख धर्म दूते डिठिया किरत कर्म ना मिटे नानक हर नाम कन नहीं खटिया उद्म करे अनेक हर नाम ना गाव ही परमे जून असंख मर जन्मे आव ही पशु पंखी सैल तरवर कंत कशु न आवे बीज बोवस भोग भोग किया अपना पावे रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु अपना पाव ही बिनवंत नानक परमे परमाए किन एक टिकन ना पाव ही जो बन गया बेतीत जरमल बैठिया कर कंपे सिर डोल नैन ना डीठिया नैन ऐन दीसे बिन भजन ईसे छोड़ माया चालिया भया ना माने सिर खाक शान जिन संग मन तन जालिया।

इड़तन रूपहीन किज साक न सिन्ना राजा सगली सिटका हर नाम मन पिन्ना तिसकी तूड़ मन उदरे प्रभ होए सो प्रसन्ना। श्लोक अनक लीला राज रस रूपं छतर चमर तख्त आसन रचत मूड अज्ञान अंध नानक सुपन मनोरथ माया सुपने हावरंग माणिया मिठा लगड़ा मोह नानक नाम विहूणिया सुंदर माया त्रोहो पौड़ी सुपने से चित मूर्ख लाया बिस्तरे राजरस पोक जागत पगलाया आर जा गई वेहाय संदे ताया पूर्ण पय ना काम मोया माया क्या वे चारा जंत जा आप उराया। श्लोक बसंत स्वर्ग लोक है जिद ते प्रथमी नव खंडन है विसरंत हर गोपाल है नांग ते प्राणी उद्यान परमण कौतक कोड तमाशय चेतन आवस नाओ नानक कोड़ी नरक बराबर उजड़ सोई थाओ पौड़ी। महापयान उद्यान नगर कर मानिया चूड़ समगरी पेख सदकर जानिया।

नाद को रंग के बेदया सनमुख उड़तावे पवर लोभी कुसुमबास का मिल आप बंधावे तू संत जना कर प्रीत है देख दर्श अघावे श्लोक चितवंत चरण कमलंग सास सास आराधन नय विश्रांत नाम अच्युत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है सीतड़ा मन मजाहे पलक न थी वे भारा नानक आसड़ी निभाहे सदा पेखंदो सच तणी पौड़ी आसावंती आस कुसाई पूरी है मिल गोपाल गोविंद ना कब हो चूरी है त्यो दर्श मन चाओ ले जाए वे सूरी है कोई पवित्र शरीर चरना थूरी है पार ब्रह्म गुरुदेव सदा हजूरी है श्लोक रसना उच्चरंत नामंग सर्वणंग सुनंत शब्द अमृत है नांग तिन सर्व बलिहारंग जिन्ना त्यान पार ब्राह्मण हब कूड़ा वे कम एक साई बारे नांग से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यो पौड़ी सद बलिहारी तिना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावे प्रामत्था हर्ज लिखे बेअंत सोह है से हत्था चरण पुनीत पवित्र चाले प्रापत्था संता संग उधार अगला दुख लत्था श्लोक पावी अदोद कारणं आरमणं संजोग पूर्ण है गोपाल दस पेटं सबल नान सो मुहूर्त कीवना सक्का पाए सोख मिति हु बारे नानक सावे लड़ी परवान जित मिलंदड़ो मा प्री पौड़ी सावेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई तो मूर्त पला संजोग है जित मिले गुसाई आड़ पैर हर त्यायक है मन इच्छ पुजाई वड़े पाग सत्संग होए निवलागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई श्लोक पत पुनीत गोविंद है सर्व दुख निवारण है तरण सूर भगवान है जे पंत नानक हर हर हरे छड्यो हबे आप लगड़ो चरणा पास नटड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदिया पौड़ी मिल लो दयाल तय पय दुआरिया रख ले वो दीन दयाल प्रमत बोहारिया भगत विशल तेरा बिरद हर पत उधारिया तुझ बिन नाही कोय बिनो मोय सारिया कर गए लो दयाल सागर संसारिया श्लोक संत उदरण दयालंग आसरं गोपाल कीर्तन निर्मलंग संसंगेन ओट नानक परमेश्वर चंदन चंदन सरद रुत मूल न मिटई काम तीतल तीवे नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओड उदरे सगल जान सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवे मूल संत्या नाम तान संत जना सो संग पाइये वड़े पुन आड़ पैर हर चाये हर जस निरसुन श्लोक दया करणं दुखरणं उच्चरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिवत न माया पाए बलंदड़ी बुल गई रखंदड़ो

आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही संभाले तिन से सोग संताप। आधे राखे जने अपने हर होए माई बाप, जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ। नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप, टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे। कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे, रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे। सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई गे, माया रच बंद हारे। चरण कम संग प्रीत मन लागी, सुरजन मिले प्यारे। नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां लपटे रे मूड़े पशु न थोरी, तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ, जो प्राई सो अपनी मनुआ। नाम संगी सो मन ना बसायो, छोड़ जाए वाहू चित लायो। सो संचयो जिद पूग तसायो, अमृत नाम तो सा नहीं पायो। ताम क्रोध मोह कूप परया, गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी, आन अवर संजान ना करी। रखाओ वड्डे पागुर अपना पायो, गुरमुख हर नाम दृढ़ायो। हर घर जाव ताब्रत नेमा, हर घर चाहे कुशल सब खेमा। आचार व्यवहार जात घर गुनिया, महा आनंद कीर्तन घर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया, सब किसके गृह।

जप एही राम नाम निर्मल है रीत रखाओ प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट को सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सखा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खोवो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत इट तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे सुमरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

दय दिस रब रहा जिस तुमर अंतर जामी सदा हजूर जो तुमरा जिस गावे करते ते दिन कभो न मरते चूर तंद बंद बिन से माया के साधु संगत मिटे बसूर सुख संपत को इस जी के फिर हर नानक जाने कूर टोडी मुहल्ला पनवा माई मेरे मन की प्यास एक न रह न सको बिन प्रीतम दर्शन देखन को तारी मन आस रखाओ सिमरो नाम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अविनाशी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा फेटे गुण तास शांत सहज सुख मन उपजे कोड़ सूर नान पर।

गोविंद आचे गोकल मध्य श्याम गो नामे मध्य राम आचे राम श्याम गोविंद गो अराग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन मन अकथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध शिष पावे पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण उत्तम खड़ दर्शन गावे राम शंकर करोड़ तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावे सब गावत जेत उपाम नानक कृपा करी हर जिन को ते संत पले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मेल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सदगुरु दान देवायो हरहाओ ते जन को मन तन सब देव जिन हर घर नाम सुनायो तन माया संपैत देव जिन घर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जल त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख होमे रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाओ जुगज करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावे हर आपे ही मत देवे स्वामी।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त घर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कछन दर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो साव सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याये सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाए गए हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप माना

प्यारा सेम दे तेन हर फल पावे जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिन्ना जी प्रवनाले ओए जप जप प्यारा जीम दे हर नाम समाले जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन कौ कुम जाया ओए आशटे परवार स्यों सब जगत छड़ाया गुर प्यारे हर सेविया गुर तन गुर तन्नो गुर हर मार्ग दसिया गुर पुन वड पुन्नो जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन पराणी जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी गुरमुख सखी सहेलियां से आप हर पाईया।

अनुसार चेतना है तो चेतल है, निर्दिनमय प्राणी छिन छिन औद विहात है, फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही, मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना, आजू काज बिगड़े नहीं जो प्रभु गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे, तिलंग महला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो, कहां गाफल सोया जो दल उपजिया संग ही, सो पी संग न होया रखाओ, मात पिता सुध बंद जान हित जा सो कीना, जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना, जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो, नान खर गुण गाए ले सब सुफन समानो, तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो अरहाओ, संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो, काल फास जब गल परी सब पयो परायो, जान बूझ के बावरे ते काज बिगारियो, पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवारियो, जे बिद गुर उपदेसया

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए, अरहाओ जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निसाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लहे विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवा, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, धावत वर्ज रहाई है, निजर चरे सह तुन लागे, करगी परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव त्या मर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजों सिंगी वाजे, तौ निरभौ पल पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मिलहारस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मिले हर पाई। सूफी महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर का नाम सुमाए, हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रहे दिन राती, पूरे गुर के शब्द सुमाने रहाओ। हर रंग कौ लोचे सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मानमुख मुग्ध नर को राहोय। जे सो लोचे रंग न होवे कोय, नदर करे तां सतगुर पावे, नानक हर रस हर रंग समावे। सूफी महला चौथा, जेवा हर रस रही अघाए, गुरमुख पीवे सहे सुमाए, हर राजन चाखो जे पाई, तौ कत अंध साध लो भाई। हरहाओ गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मानमुख हर रस चाख्या ना जाए, होमे करे बहुती मिले सजाए, नदर करे ता हर रस पावे, नानक हर रस हर गुण गावे। सूफी महला चौथा, तार छेवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद नी जाहर जपतया, उत्तम पदवी पाए, पूछो बिदर दासी सुत, किसन उतरिया कार्य से जाए। हर की अकथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दूह पूह सब ले जाए। अरहाव रविदास चुमार उस्तद करे, हर कीर्त निमख एक गाए, पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोभ शीपा कहे बुलाए, खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सर तीर्थ तिन तिलक कढ़ाए, जन नानक तिन को अन दिन परसे, जे कृपा करे हर राय। सूफी महला चौथा, तिनी अंतर हर आरा दया, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा, जिनकी वकीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर घर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा। अरहाव तुर भगत जिना कौ बख्सया, हर अमृत पद पंडारा, मूर्ख होवे सो उनकी रीस करे, तेस हलत पलत मोकारा, से भगत से सेवका, जिन्ना घर नाम प्यारा, तिनकी सेवा ते घर पाईए, सिर निंदक कै पवे शारा, जिस कर विरति सोई जाने, जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा, चौ पीढ़ी आद जुगाद, विखीली कने ना पायो, हर सेवक पाए निस्तारा। सूफी महला चौथा, जिथे घर आरा दिए, तिथे घर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसे, होर तबित लया न जाई, हर तन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। अरहाव सह संगति संघर तन खटिए, होर ते होर तो पाए, हर तन किते ना पाई, हर तने का वापारिया, हर तन तन विहाजे, कच्चे के वापारिये वा के, हर तन लया न जाई। हर तन रतन जवे हर मानक, हर तने नाल अमृत वे लैवत, हर भगती हर लिवलाई, हर तन अमृत वेले वत्ते का बीजया, भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही, हलत पलत हर तने की, भगता को मिली वडयाई, हर तन निरपौ सदा सदा।

अतीत सदाए माया का माता, मन नहीं प्रीत कहे मुख राता, कहो नानक प्रभिनो सुनीज, कुचल कठोर कामी मुक्त कीज, दर्शन देखे की वडियाई, तुम सुखदाते पुरख सुभाई, रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, बुरे काम को ऊड़ खलोया, नाम की बेला पै पैसोया, अवसर अपना बुझे ना एना, माया मोह रंग लपटाना, अरहाओ लोभ लहर को बिरस फूल बैठा, साजना का दर्शना डीठा, कहू ना समझे अज्ञान गवारा, बौर बौर लपट्यो जंजारा, अरहाओ दिखे नाद कर्ण सुन पीना, हार जस सुनत आसमान कीना, दिखत नाही रे पेघत अंधे, तोड़ जाए झूठे सब तंदे, अरहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करीज, तार कृपा मुझे साथ संग दीज, तौ कुछ पाइये जो हो ये रेना, जिसे बुझाए इस नाम लेना, अरहाओ सूही महला पंजवा, धर में ठाकुर नदर ना आवे, गल में पहाण लय लटकावे, परम में पूला सागत फिरता, नीर बरोले खपका मरता, रघाव जे पान को उठा कर कहता, ओ पान ले उसको डुबता, गुनेगार लून हरामी, पहाण नाव ना पार करामी, गुर मिल नानक ठाकुर जाता, जल थल महियल पूर्ण विधाता, सूही महला पंजवा, लालन रावया कवन गति री, सगी बतावो मुझे मतीरी, सूहूब सूहब सूहबी अपने प्रीतम के रंग रत्ती, रघाओ पाप मलोव संग नैन पतीरी, जा पठावो जाओ ततीरी, जब तब संजम देव जतीरी, एक निमुख मलावो मुए प्राण पतीरी, मान तान अंगबुद हतीरी, सा नानक सुहाग वतीरी, सूही महला पंजवा, तू जीवन तू प्राण आधारा, तुझगी पेख पेख मन साधारा।

लोभ मोह बाधा मां गर्त मैं निगरत जाता नानक की अरदास सुनीज दूपत पाहन प्रभ मेरे लीजे सूही महला पंजवा जीवित मरे बुझे प्रभ सोए तिस जान कर्म प्राप्त होए सुन साजन यों दुत्तर तरिये मिल साधु हर नाम उच्चरिये रहाओ एक बिना दूजा नहीं जाने घट घट अंतर पार ब्रह्म पछाने जो किश करे सोई फल माने आद अंत की कीमत जाने कहो नानक तिस जन बलिहारी जा के हृदय वसे मुरारी तू ही महला पंजवा गुर परमेसर करने हार।

तू मैं छड़ाए लियो जन अपना उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दोख महाबिकराला खिन मैं दूर किए दयाला सोग रोग बिपत अद पारी दूर पई जपना मुरारी दृढ़ तार लीनो लड़लाए हर चरण गए नानक सरणाए सूही महला पंजवा दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

कामना तौल हर जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोख आए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ सोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास।

तौ में आया सरनी आया, भरोसे आया कृपा आया, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, मार्ग गुरे पठाया, अरहाओ मां दुत्तर माया, जैसे पवन चुहलाया, सुन सुन ही डराया, करो त्रमराया, गृह अंध कूप आया, पावक सगराया, गई ओर साधाया, नानक घर त्याया, अब मैं पूरा पाया, राग सूही महला पंजवा, कार सेवा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद सदगुर पास बे

लाइन हरसो लाइन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ठोवा हर जन के पीसण पीस कमावा नानक की प्रा पास बेनंती तेरे जाना देखण पावा सूफी महला पंजवा पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर आपे करने हारा चरण तूड़ तेरी सेवक मांगे तेरे दर्शन को बलिहारा मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रही है तुद पावे ता नाम ज पाव है सुख तेरा दिता लही है रहाव मुक्त भुगत जुत तेरी सेवा जिस तू आप कराए है कहां बैकुंठ जय कीर्तन तेरा तू आपे सरदा लाए सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहला चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा मेरे सदगुर दीन दयाला कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया नानक कौ प्रापए कृपाला सदगुर पूरा पाया तू ही महला पंजवा तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरै सो मर जाए दयाल होवे जिस ऊपर करते सो तुद सदा थे आए मेरे साहेब तू मैं मान ने मानी अरदास करी प्रभे अपने आगे सुन सुन जीवा तेरी बाणी अरहाओ चरण तूड़ तेरे जन की होवा तेरे दर्शन को बल जाई अमृत भजन दे उरतारी तो कृपा ते संग पाई अंतर की गात तुझ पैसारी तुझ जेवड़ अवर ना कोई जिसनु लाए लाए सो लागे भगत तुहारा सोई दोए कर जोड़ मांगो एक दाना साहेब तुठे पावा सास सास नानक आराध्य आठ पैर गुण गावा सूगी महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी तो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया।

ना कुल टंग ना मीठे बैना अरहाव छह सीगर कामन करे आवे ता सुहागन जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत न साहेब सिमरिया जाई तुरत मत ना ही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत सुमाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सदगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जियो ऋण नावे प्रम फुलिया ठग मुठी कूड़ियार जियो।

मैं तुझ ऊपर बहुमानिया, जा तू अंदर ता सुखे, तू निमाणी माणिया, जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल, एह पाई मूह दातड़ी, नित हिरदे रखा समाल, पाव जुलाई पंध तो नैनी दर्श दिखाल, श्रवणी सुनी कहानियां।

आओ कनेरा सुन प्रा मेरा, मैं तेरा परवस। दर्शन देख पई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा। सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए। नानक साजन कौ बल जाइए, साच मिले कर आए। कर आएड़े साजना तां तन खरी सरसी राम, हार मोहेड़ी।

दहे दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए। नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए बुठे कर माही, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग सूही महला तीजा, कार तीजा भगत जना की हर जीव रख है। जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे। हमे शब्द जलाया राम, हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया। जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी। भगतां की चाल सची अत निर्मल, नाम सचा मन पाया। नानक भगत सोह है दर सच, जिनी सचो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम। हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी। अन दिन भगत करे दिन राती, करगी महे बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखे सदा नाले। नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम संभाले। मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत न होई राम। होमे माया रोग व्यापे, मर जन्मे दुख होई राम। मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई। विन गुर तत् न जानिया, भगत विहूणा सब जग परमिया। अंत गया पछतानिया, कोड़ मध्य किने पछाणिया। हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई। दूजे पाए पद खोई, भगतां कै घर कारज सचा। हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया। काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे। हर मन पाणे नाम रदान सत पाया, सदा अखुट कदे ना निखुट। हर दिया सहज सुपाया, हर जन ऊचे सदगी ऊचे। गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा। शब्द सच्चे सच सोहला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौमे साब केलभग काटे, साज रख्या उर तारे राम। सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई। सच्चा सतगुर सच्ची बाणी, जिन सच वखा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे साब सोई। नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सतगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। साचे नाम सुख होई मरे ना कोई, गर्भ ना जूनी वसा। ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाए परगस। जिनी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्याइन। नानक सच नाम जिन हिरदय वसया, ना विछड़ दुख पाइन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, तेत कर सोयला होई राम। निर्मल गुण साचे मन तन साचा, फिर साचा पुरख प्रसोई राम। सब सच वरत सचो बोले, जोस करे सो होई। जय देखा तै सच पसरिया, अवर ना दूजा कोई। सच्चे उपजे सच समावे, मर जन्मे दूजा होई।
ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਸੋਈ। ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਸੋ ਹੈ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੇ ਰਾਮ, ਕੜ ਅੰਤਰੇ ਸਤੀ ਬਾਣੀ, ਸੱਚੋ ਆਪ ਛਾਣੇ ਰਾਮ। ਆਪ ਛਾਣੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣੇ, ਸੱਚੇ ਸੋਝੀ ਹੋਈ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਹੈ ਸੋਭਾ, ਸੱਚੇ ਕੀ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਾਜ ਰਤੇ ਭਗਤ ਇੱਕ ਰੰਗੀ, ਦੂਜਾ ਰੰਗ ਨਾ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਉ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਸ ਸੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਚਲ ਰਾਜ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇਰਾ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਮ, ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ, ਧਨ ਪਿਰ ਮੇਲਾਵਾ ਹੋਆ, ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਵੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਰਾਵੇ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮ, ਸਦਾ ਹੋਵੇ ਸੁਹਾਗਣੀ। ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ, ਫਿਰ ਮਹਿਲਾ ਵੇਸ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੇ ਕੋਈ, ਹਉਮੈ ਮਾਰ ਪਛਾਣਿਆ, ਕਰਣੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਮਾਵੇ, ਅੰਤਰ ਏਕੋ ਜਾਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਰਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਆਪਣਾ, ਸਾਚੀ ਸੋਭਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਪਿਰ ਰਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਸੋਈ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਨ ਬਾਲੜੀਏ, ਹਰ ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ, ਹਰ ਕੇ ਰੰਗ ਰਤੀ ਹੈ ਕਾਮਣ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ, ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਸੱਚ ਸੁਮਾਏ, ਸੱਚ ਵਰਤੇ ਸਭ ਥਾਈ, ਸੱਚਾ ਸੀਗਾਰ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਕਾਮਣ ਸੱਚ ਸੁਮਾਈ। ਹਰ ਸੁਖਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ, ਕਾਮਣ ਲਿਆ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਮਹਿਲੀ ਮਹਿਲ ਪਛਾਣੇ।

परमगत पाई, पंच मिले सोहाया, गया क्रोध ममता तननाठी, पाखंड परम गवाया, हम में पीर गई सुख पाया, आरोगत पय शरीरा, गुरप्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए, बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे, कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे, महा दुख पावे, वेण सदगुर मगना पाया, उजड़ पंथ प्रमे गावारी, खिन खिन तक्के खाया, आपे दया करे प्रवदाता, सदगुर पुरख मिलाए, जन्म जन्म के विछड़े जन्म मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदे तन ओ माइया बलराम जीओ, पंडित पांदे आन पत्ती, बह वाचाइया बलराम जीओ, पति वाचाई मन वजी वधाई, जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बा

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन बीचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया सातन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना करे मरे ना जाई राग सूखी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लिवलाई अन दिन सहज रह गए रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाणे अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो

एक सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, समलिया सच थान, मान महत सच पाया।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभ कौ बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है।

ए राम परम पद पाया आप मिटाया हर पूर्ण कृपा तारी सफल जन्म हुआ पो पागा हर पीटिया एक

चित लाया प्रभ अवनासी हो तिसकी दासी मरे न आवे जाए। धर्म अर्थ तामसा पूरन मन चिंदी इश पुजाए सुरत सिमरत गुण गावे करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा ने स्वामी वड़पागी हर हर गाया। एक ओंकार सदगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा सलोक महला तीजा तूहे वेस दुहागणी पर फिर रावण जाए। फिर छोड़िया कर अपने मोही दूजे पाए मिठा करके खाया बहु साधों वध्या रोग सुध पतार घर छोड़िया फिर लगा जाए विजोग गुरमुख होवे सो पलटिया हर राती साज सिंगार सहज सच फिर रावया हर नामा उरतार आज्ञाकारी सदा सुहागण आप मिली करतार नानक फिर पाया अगर साचा सदा सुहागण नार महला तीजा सूविये निमाणिये सो सो सदा संभाल नानक जन्म सवारे अपना पुल पी छुट्टी नाल पौड़ी आपे तख्त चायोन आकाश पताला हुक्मी धरती साजियन सची तरमसाला आप पाए खपाएंदा सच्चे दीन दयाला सब न रिजक सबाहेंदा तेरा हुक्म निराला आपे आप वर्तदा आपे प्रतपाला सलोक महला तीजा सूबता सुहागणी जा मन लय सच नाओ सतगुर अपना मनाए लय रूप चढ़ी ता अगला दूजा ना ही ताओ ऐसा सीगार बनाए तू मैला कदे ना हो वई अहे निस लागे पाओ नानक सुहागण का क्या चेन है अंदर सच मुख उजला खसमे माए सुमाए महला तीजा लोकां वेखो सूवी सूहा वेस करी वेसी सौ ना पाईए कर कर वेस रही नानक तिनी सौ पाय जिन्नी गुर की सिख सुनी जोत पावे सोचिए इन बिद कंत मिली पौड़ी हुक्मी सिरट साजियन

सच रते से निर्मले हौमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है तंतन पाया जाए इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए। मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए। नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई। सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है

तथा सबना भगता की कबीर के एक ओंकार सदगुर प्रसाद अवतर आए कहां तुम कीना राम को नाम न कबहू लीना राम ना जप हो कमर मत लागे मर जैबे कहो क्या करो अपागे रखाओ दोसु करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर दुख पाया।

एक कोट पंच गिदार पंचे मांगे हाला, जिमी नाई मैं किसकी बोई ऐसा देन दुखाला। हर के लोग मोको नीत डसे पटवारी, ऊपर पूजा कर मैं गुर पे पुकारिया, तिलखों लिया उबारी रखाओ। नौ डाढ़ी दस मुंसब तावे, रैयत बसन ना देगी, डोरी पूरी मापे नाही बहु बिस्टाला लेगी। बहत्तर कार एक पुरख समाया, उन दिया नाम लिखाई। तरमराए का दफ्तर सोदया, बाकी रिजमना काई। संतां कहो मत कोई निंद हो, संत राम गए एको। कौ कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बवेको। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। सह की सार सुहा गण जाने, तज अवमान सुगर लिया माने। तान मन दे न अंतर राखे, अवरा देख न सुने अपाखे। सोकत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द न पाई। अरहाव दुखी दुहागन दोए पख ही नी, जिनहा निरंतर भगत न कीनी। पुरसलाद का पंथ दुखेला, संग न साथी गमन अकेला। दुखिया दर्दवंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कहे रविदास शरण प्रभु तेरी, ज्यों जान हो त्यों कारगत मेरी। सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही। संग चलत है हम पी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तय जीवन जग सच कर जाना। अरहाओ जिन जियो दिया सूरज अम्बरावे, सौकड़ पीतर खाड़ चलावे। कार बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम सुमार सवेरा। जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, साय परी दैद अंधियारा। कहे रविदास निदान दीवाने, चेत सुनाही दुनिया फन खाने। सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन न होई। यो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी। रखाओ भाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा। घर की नार उरह तन लागी, ओ तो पूद पूद कर पागी। कहे रविदास सबे जग लूटिया, हम तो एक राम कै छूटिया। राग सूही बाणी शेख फरीद जी की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। ताप ताप लोहे लोहे हाथ मरोरो, बाबल हो ईसो सो लोरो। तैसे मन में की आरोस, मुझ अवगुन सैना ही दोष। तै साहेब की मैं सार न जानी, जो बन खोए पाछे पछतानी। रखाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हो बिरहे जाली। पिरहे बिहून कतह सुख पाए, जा होए कृपाल ता प्रभु मिलाए। विद्दन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली। कर कृपा प्रसाद संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लो बेली। वाट हमारी खरी उड़ीनी, खन्यो तिखी बहुत पेईनी। उस ऊपर गए मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा। सूही ललत बेड़ा बंद न सक्यो, बंधन की वेला। पार सरवर जब उछले, ताब तरण दुहेला। हाथ लड़ाए कुसुम्बड़े, जल जा सी ठोला। अरहाओ एक आपी ने पातली, सह केरे बोला। दुद्धा थनी न आवई, फिर होए न मेला।

पाई, अचिंत नाम बसया मन आई, होमे माया शब्द जलाई, दर सच गुरते शोभा पाई, जगदीश से वो मैं अवर ना काजा, अन दिन अंद होवे मन मेरा, गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ, मन की प्रतीत मन ते पाई, पूरे गुरते शब्द बुझाई, जीवन मरण को समसर विख है, बौड़ ना मरे ना जमपिख, कर ही मैं सब कोट निधान, सदगुर दिखाए गया अभिमान, सदगी लागा सहज ध्यान, अनदिन गावे एको नाम, इस जुग में वड्याई पाई, पूरे गुरते नाम ते आई, जय देखा तै रहा समाई, सदा सुखदाता कीमत नहीं पाई, पूरे पाग गुर पूरा पाया, अंतर नाम निधान दिखाया, गुर का शब्द अत मीठा लाया, नानक त्रिशन बुझी मन तन सुख पाया, अराग बलावल महला चौथा, कार तीजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद उद्यम मत प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना, ज्यों नटुआ तंत वजा।

माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना जो प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गत मित कहिए हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चम चमरे हार उतरे ओ परे ओ सरना, प्रभ दीन दयाल भगत पवतारन हम पापी राख पपना, हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दासन्ना, बिलावल महला चौथा हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती शरणागत पुरख अजन्मा, कर कृपा रख ले।

जे बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बांछ सो करे जे मेरे चितना चितैनी। मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी। आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी। मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी। जन नानक के प्रभु करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी। बलाबल मोहल्ला चौथा आनंद मूल त्यायो पुरखोत्म अन दिन अंध आनंदे। धर्म राय की कान चुकाई सब चूके जम के छंदे। जप मन हर हर नाम गोविंदे वड़भागी गुर सतगुर पाया। गुण गाए परमानंदे रघाओ साकत मूड माया के बधक विच माया फिरे फिरंदे। तृष्णा जल तकृत के बांधे जो तेली बल्द पवंदे। गुरमुख सेव लगे से उधरे वड़भागी सेव करंदे।

मोहे अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहे निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्ब दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विस्तृत नाम होवत तन सार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज, हर

आप ही पुजारी, आप ही देवा, आपे जोग, आप ही जूता, नाग के प्रभ सदगी मुक्ता। बिलावल महला पंजवा, आप उपावन, आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही जरना, अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, फूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड़ भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुसु करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बां पकर सदगुर निस्तारा। बिलावल महला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कामन सुमत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रा मांगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो, मत बुसुरत नहीं चतराई,

आओ, जो जो निंद करे इन ग्रहण की, इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई, जा को शब्द अखंड अपार।

तो प्रसन्न पै सगुर प्रभु कज बिघन नाथी। जा का अंग दयाल प्रभ ताके सबदास सदा सदा वड़े आईया।

अब प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मद कूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ है राया। बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे अनक शिदर मन में टके निर्मल दृष्टेहे। क्यों बिस्तरे प्रा मने ते जिसके गुण एह, प्राप तज रचे जे आन स्यो सो रलिगे खेहे रघाओ। सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करेह, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेह। जिन अनक एक बहु रंग किए है होसी एह, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे। ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेह, दास दास को दासरा नानक कर लेह। बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर सुमरथ प्रभ पूर्ण गुण तास। जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे। रखाओ आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे। करणहार जो कर रहा साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई। चिंत अंदेसा गणत ताज, जन हुकुम पछाता नै बिरसे नै छोड़ जाए।

मान खुड हर तेरा नहीं विसास, तू मां उदमादा खर का पैखर तौ छुटे जो ऊपर लादा रखाओ। जब तब संयम तुम खंडे यम के दुख डांड, सिमरे ना ही जोन दुख निर्लज्जे पांड। हर संग सहाई महामीत तिस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवाराई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना, तान तन सर्व से अपना प्रभ जन को दीना। बलाबल महला अपनवा उदम करत आनंद पया, सिमरत सुखसार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार। चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा, पार ब्रह्म आराधते मुख अमृत पीवा। रघाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच, पर उपकार नित चितवते नाही कजपोच। तन सो थान बसंत तन जय जपिए नाम, कथा कीर्तन हर अत कना सुख सहज विश्राम। मन ते कदे ना विसरे अनाथ को नाथ, नानक प्रभु शरणागति जाके सब किस घात। बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या पुर सुखमय पाया, सदा सिमर चरणारविंद शीतल होताया। जीव त्या अथवा मोया किस काम न आवे, जिन इउ रचन रचाया को तेज्यो रंग लावे। रघाओ रे प्राणी उसन सीत करता करे, काम ते काढ़े कीरी ते हस्ती करे। तू टाले गंडे अंडज जेरज सेत उत्पज, प्रभ की एक किरत किरत कमावन सर्व फल। रब गे घर निरत थाम ते कशु ना होवना शरण प्रसाद, मोह मगन कूब अंध ते नानक गुर काढ। बिलावल महला पंजवा खोजत खोजत मैं फिरा खोजो बनतान, अश अशेर अभेद प्राव ऐसे भगवान। ताब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग, जागन ते सुबना भला बसिए प्रसंग। रघाओ वर्ण आश्रम सत्र सुनो दर्शन की प्यास, रूप ना रेख ना पंच तत् ठाकुर अविनाश। ओ स्वरूप संतन कहे विरले जोगीसर, कर कृपा जा को मिले

जी जंत सो प्रसन्न भए देख प्रताप करज उतारिया सतगुरु कर आहर आप खात खर्चत निवत रहे गुरु शब्द अखूट।

अपनाया, सेमर सेमर मन तन सुखी, नाक निरपया, बिलावल मुहला पंजवा, कर तर मस्तक थापया, नाम दी नूदान, सबल सेवा पार ब्रह्म की, ताकि नहीं हान, आपे ही प्रवराखता, भगतन की आन, जो जो चितवे साध जान, जो लेता मान रखा, शरण परे चरणारविंद, जन प्रभु के प्राण, सहज सुभाए नानक मिले, ज्योति जोत समान, बलावल मुहल्ला पंजवा, चरण कमल का आसरा, दीनू प्रभ आप, प्रभ शरणागत जन परे, ताका सद प्रताप, राखनहार अपार प्रभ, ताकी निर्मल सेव, राम राज, रामदास पुर, इन्हें गुरदेव रखाओ, सदा सदा घर त्याई है, किस बिघन न लाग, नानक नाम सलाई है, पैद सुमन पग, बिलावल मुहल्ला पंजवा, मन तन प्रभ आराधी है, मिल साध समग, उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम पग, राम नाम जो जन जपै, आन दिन सद जागै, तंत मंत नै जो होई, तित चाख न लागै रहाओ, काम क्रोध मद मान मोह,

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बख्शेन अपनी कल तारी मन बांझत फल दितेन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन श्रवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती नयन दर्श रंग लाए।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

सात त्रिप्त अघाए पेह प्रदर्शन अमृत हर्ष पूजन खात चरण शरण नांग प्रतेरी कर कृपा संत संग मिलात बिलावल मोहल्ला पंजवा राख लिगी अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रघाओ गुण गोविंद राखो सब हर जन राग रतन रसना आलाप कोट जन्म की तिशना निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाते गुर के भजन जपे हर जा।

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते ऊपर को नाही। बिलावल मोहल्ला पंजवां। सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कछ दुख ना व्यापे, आगे दरगे पूर्ण काम रहाओ, आप त्याग परिये ने सरणी, गुरते पाएगे इहो निदान, जन्म मरण की कटिए फांसी, ताची दरगे का निशान, जो तुम करो सोई फल मानो, मन ते छूटे सगल गुमान, कहो नानक ताकी सरणाई, जा का किया सगल जहान। बिलावल मोहल्ला पंजवां। मान तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर वकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही रहाओ, कोल समूह उदरे खिन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, अंध सेती बिखिया बन गाही, चरण प्रभु के बोहित पाए, और सागर पार पराही, संत सेव

चरण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इओ पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवां सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक पुत्र मीत तन किशु न रहियो।

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु।

मूला नस्यों प्रीत बनी अरहाओ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माहे बस्त है तू कर कृपा प्रवे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहित है मोहे करो कृपा ठाकुर अपनी बिलावल महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ताका हिरदे तर मन ध्यान रखाओ सिमर सिमर सिमर सुखदाता जाका किया सगल जहान रसना रवो एक नारायण ताती दरगे पावो मान साधु संग प्राप्त जाको तिन्ही पाया इहो निधान गावो गुण कीर्त नित स्वामी कर कृपा नानक दीजे दान बिलावल महला पंजवा राख लिगे सतगुर की शरण जय जयकार हो आज अंतर पार ब्रह्म तेरो तारण तरण रखाओ विश्वम पर पूर्ण सुखदत्त सगल समग्री पोखण परण थान सनंतर सर्व नरंतर बल बल जाई हर के चरण जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करण आद जुगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरण।

गोविंद गुरु मेरे, मुझे अपराधी शरण चरण रखाओ। जो जो कीनो सो तुम जानेओ, पेखे उठाओ नाही कछ तीठ मुकरण। बड़ प्रताप सुनो प्रभु तुमरो, ओट अगा तेरो नाम हरन। हमरो सहाओ सदा सदा फूलन, तुमरो बिरद पतत उधरन। करना मैं कृपाल कृपा निध, जीवन पद नानक हर दर्शन।

दूत धुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नान कुचरे घर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवां, बिन पय भगती तरन कैसे, करो अनुग्रह पथ उदाहरण। राग स्वामी आप भरोसे रखाओ, सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत। दिखया राता स्वान जैसे, औद बिहावत अधक मुहावत। पाप कुमावत बुढ़े ऐसे, शरण दुख पंजन पुरख नरंजन। साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन। नानक जीवत दर्श दिसे, राग बिलावल महला पंजवा। दो पदे हर नामा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। आपे मेल लय, जब ते शरण तुम्हारी आए, तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी, साधे शरण पय। जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम, तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी, रखे तार दए। कहो नानक गुरपुरा फेट्यो, आमन जान रहे। बिलावल मोहल्ला पंजवां, जीवो नाम सुनी, जो सो प्रसन्न पए गुरपुरे। ता मेरी आस पुन्नी रखाओ, पीर गई बंदी मन तीरा। मुयो अंध तुनी, उबजो चाओ मिलन प्राप्रीतम। रहन ना जाए खिनी, अनक भगत अनक जन तारे। तिमरे अनक मुनि, अंध ले टेक नेर थन थन पायो। प्रभ नानक अनक गुणी, राग बिलावल महला पंजवां। कर तेरवां पड़ताल।

कहत मैं याको जैसे पाहन जल मैं राख्यो फिर नहाए ते पानी तैसे ही तुम ताए पछानो भगत हीन जो प्राणी कल में मुक्त नाम ते पावत गुर यह फेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावे। बिलावल अष्टपदियां महला पहला कार दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद निकट बसे देखे सब सोई गुरमुख विरला बूझे कोई वेण पै पै भगत न होई सब धरते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख पावस रस रसमान रहाओ। ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथ कद बाद करे दुख होई तद कहने ते रहे न कोई बिन रस राते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत साचा मन सोई मन मुख कथनी है पर रहत न होई ना वो फूले थाओ न कोई मन माया बंध्यो सरजाल कड़ कड़ व्याप रहो बिख नाल जो अंज तो दिसे काल कार्य सीधो हृदय समाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई मन मखो में पत गवाई आपे करत है भगत कराई गुरमुख आपे दे वड़ियाई रैन अंधारी निर्मल जोत नाम बिना झूठे कुचल कशोत वेद पुकारे भगत स्रोत सुन सुन मन वेख जोत शास्त्र सिमरत नाम गिरड़ामंग गुरमुख सांत ऊतम करामंग मनमुख जोनी दुख सहामंग बंधन टूटे एक नाम वसामंग मन्ने नाम सची पद पूजा किस वेखा नाही को दूजा देख कहो पावे मन सोए नानक कहे अवर नहीं कोय। बिलावल महला पहला मन का कहया मनसा करे यो मन पुन पाप उचरे माया मन माते तृप्त न आवे तृप्त मुक्त मन साचा पावे तन तन कलत सब देख अवभाना बिन नावे किस संग न जाना रखाओ की तेरस पोक खुशियां मन केरी तन लोका तन पसमे ठेरी खाकू खाकर ले सब फैल बिन शब्दे नहीं उतरे मैल गीत राग तन ताल से कूरे त्रिगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुरमत दर्द ना जाए झूठे गुरमुख दारू गुण गाए होती उजल तिलक गलमाला अंतर क्रोध पड़े नाटशाला नाम सार माया मद पिया बिन गुर भगत नहीं सुगतिया तूकर स्वान गर्द मंजारा पशु मलेश नी चंडाला गुरते मोह फेरे तिन जोन पवाईये बंधन बाध्या आईये जाइये गुर सेवा ते लहे पदार्थ हृदय नाम सदा किरतार्थ साची दरगे पूछ न होए माने हुक्म थीजे दर सोए सदगुर मिले ता तसको जाने रहे रजाई हुक्म पछाणे हुक्म पछाण सचे दरवास काल विकाल शब्द पै नास रहे अतीत जाने सब तुका तान मन अर्पे है यो जिसका ना उ आवे ना उ जाए नानक साचे साच समाए। बिलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच गयान अंतर लोभ चूठ अभमान बिन नावे पाज लहे गिनदान सतगुर सेव नाम से मन तीत गुर पेटे हर नाम चेतावे बिन नावे होर

आप ना बूझे लोक बजावे, मन का अंधा अंध कमावे, तार कर महल ठौर कैसे पावे। हर जियो सेव गे अंतर जामी, कट कट अंतर जिसकी जोत समानी, तिस नाल क्या चले पैनामी। साचा नाम साचे शब्द जाने, आपे आप मिले चूके अभमाने। गुरमुख नाम सदा सदा वखाने, सदगुर सेवे है दूजी दुरमत जाई। औगण काट पापा मत खाई, कंचन काया ज्योति ज्योत समाई। सदगुर मिले वड्डी वडियाई, दुख काट हिरदय नाम साई। नाम रते सदा सुख पाई, गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मुख द्वार। नानक गुरमत मान्या परवार है साधार। बिलावल महला चौथा अष्टपदियां कार ग्यारवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आपे आप खाए हो मेटे, आन दिन हरस गीत गवैया। गुरमुख परचय कंचन काया, निरपो ज्योति ज्योत मिलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खेन पल रह न सको बिन नावे। गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रखाओ, ए गृह द्वार है जाके। अहन से तस्कर पांच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जावे। मानमुख अंधले खबर न पैया, कंचन कोट बहुमानक भरिया। जागे ज्ञान तत् लिवलैया, तस्कर हेरू आए लोकाने। गुर के शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत भोयता। खेवट शब्द गुर पार लंघैया, जम जागाती नेड़ न आवे। ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती। मैं हर कहते अंत न लहिया, गुरमुख मनवा इकत कर आवे। मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्श मन तृप्त। धर्म बाणी गुर शब्द सुनैया, सुन सुन आत्म देव है पीने। रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे। तुरिया गुण है गुरमुख लहिया, एक दृट सब सम कर जाने। नदरी आवे सब ब्रह्म पसरैया, राम नाम है ज्योत सबाई। गुरमुख आपे अलख लखैया, नानक दीन दयाल पय है। भगत पाए हर नाम समैया, बिलावल महला चौथा। हर हर नाम शीतल जल प्याव हो, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत्संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संघ हर भुइया। जप जगन्नाथ जगदीश गुसैया, शरण परे से जन उभरे। जो प्रहलाद उधार समैया रखाओ, पार अठारे मैं चंदन उत्तम। चंदन निकट सब चंदन हुईया, सागत कूड़े उब सुख हुए। मन अभमान विछड़ दूर गईया, हर गात्मित करता आपे जाने। साबिद हर घर आप बनैया, जिस सदगुर पेटे तो कंचन होवे। जो तो लिखिया सो मिटे ना मिटैया, रतन पदार्थ गुरमत पावे। सागर भगत पंडार खुलैया, गोर चरणे एक सरदा उबजी। मैं हर गुण कहते तृप्त ना पैया, परम बैराग नित नित हर त्याए।

नानका नाम ते आए। दीनानाथ दयाल मेरे स्वामी, दीनानाथ दयाल जाचो संतरवाल रखाओ। संसार विखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप, गय पूजा प्रभ जी ले हो। हर नाम अपना देहो, प्रभ तुझ बिना नहीं चाहो। नानका बल बल जाओ, लोभ मोह बादी देहे, बिन भजन होवत खेहे। जमदूत महा पयान, चित गुप्त कर मैं जान। दिन रैन सार सुनाए, नानका हर शरणाए। पय पंजना मुरार, कर दया पतत उधार। मेरे दोख गने ना जाहे, हर बिना कते समाहे। गय ओट चितवी नाथ, नानका दे रख हाथ। हर गुण दे गोपाल, सर्व कट प्रतपाल। मन प्री दर्शन प्यास, गोविंद पूर्ण आस। एक निमख रहन ना जाए, वडभाग नानक पाए। प्रभ तुझ बिना नहीं होर, मन प्रीत चंद चकोर। जो मीन जल सुवेत, आल कमल पिन ना पेत। जो चकवी सूरज आस, नानक चरण प्यास। जो तरन परत परान, जो लोभिये तन दान। जो दूध जले संजोग, जो मां खुदिया रस भोग। जो माद पूते हेत, हर सिमर नानक नेत। ज्यो दीप पतन पतंग, ज्यो चोर हिरत निसंग। मैं गले कामे बंद, ज्यो ग्रस्त बखई तंद। ज्यो जुआर बिसन ना जाए, हर नानक इहो मन लाए। कुरंक ना देने हो, चात्रक चाहत में हो। जन जीवना सत्संग, गोविंद भजना रंग। रसना बखाने नाम, नानक दर्शन दान। गुण गाए सुन लिख दे, तो सर्व फल हर ले। उल समूह करत उधार, संसार उतरस पार। हर चरण भोजित ताहे, मिल साध संग जस गाहे। हर पैज रखे मुरार, हर नानक

का नीरे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बड़ा नीरे हर के सेवक जो हर पाए इनकी कथा निरारी रे आवे ना जाए ना कबहू मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया इह तजो जी जानी रे कैद कबीर सुनो रे संतो मिल गए सार्ग पानी रे बिलावल विद्या ना परो बाद नहीं जानो हर गुण कथत सुनत बौरानो मेरे बाबा मैं बौरा सब खलक सयानी मैं बौरा मैं बिगड़ो बिगड़े मत औरा रहाओ आप ना बौरा राम की ओ बौरा सदगुर जार गयो परम मोरा मैं बिगड़े अपनी मत खोई मेरे परम फूलो मत कोई सो बौरा जो आप ना पछाने आप पछाने ता एक कह जाने अभे ना माता तो कहो ना माता कहे कबीर रामे रंग राता बिलावल ग्रेव तज बन खण जाइए क्यों खाइए कंदा अजो विकार ना छोड़ई पापी मन मंदा क्यों छूटो कैसे तरो भजल निध पारी।

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

लूट लेहे सागत पद खोवे सात जना पग मल मलत होवे पांच पूत जने एक माए उत पुज खेल कर जगत विहाए तीन गुणा के संग रच रसे इनको छोड़

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवां जा को राखे रखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जो है।

आंदमूल सदा पुरखोतम अड़ बिन से गगन ना जाए ले मोहे बैराग पयो इहो जीव आए कहां गए हो रगाओ पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे कर्म बद तुम जियो कहत हो कर्म किन जियो दीन रे हर मैं तन गए तन मैं हर गए सर्ब निरंतर सोए रे हे कबीर।

जैसे गाय का बाछा शूटला, थान चोखता माखन कूटला, नाम दियो नारायण पाया, पुर पीड़त अलख लखाया, जैसे बिखे हिद परनारी, ऐसे नामे प्रीत मुरारी, जैसे तापते निर्मल कामा, तैसे राम नामा।

सगली सिमरत श्रवनी सुने करे निंद कमने नहीं गुने। जे ओ अनक प्रसाद करावे भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बेरा ना सांड करे निंद बो जो नी हांड। निंदा कहां करो संसारा निंदक का प्रगट पाहारा। निंदक सोध साध विचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महला।

कोई नाम जपे जप माली लागे तिसे ध्याना अभी कभी किशु न जाना तेरा एको ना पछाना ना जाना हरे मेरी कमन गते हां मूर्ख अज्ञान शरण प्रा तेरी कर कृपा राखो मेरी लाज पते रखाओ तहू जीड़ा उब चढ़त है कभू जाए पयाले लोभी जीड़ा थिरना रहत है चारे कुंडा पाले मरण लखाए मंडल में

ओ मैं मान कलाला, तुम देव होते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया, नानक कहन न जाए, राम कली महला पनवा, कर कर ताल पखाव ज नयन हो, माथे वजे रबाबा, करनो मद बासरी बाजे, जेवा तुन आ गाजा, नृत करे कर मनुआ नाचे, आने कुगर साजा, राम को नृतकारी, पेखे पेखन हार दयाला, जेता सासी गारी रखाओ, आखार मंडली तरण सबाई, ऊपर गगन चिंदोआ, पनम चूला करत अकेला, जलते उपत हुआ, पंच तत कर पुत्रा कीना, किरत मिलावा हुआ, चंद सूरज दु जरे चिरागा, चौ कुंड पीतर राखे, दस पातो पंच संगीता, एक पीतर साते, पिन पिन हुए पाद दिखावे, सभो निरारी पाखे, तार कर नृत होवे दिन राती, हड़कड़ वाजे तूरा, एक नचावे, एक पवावे, एक आए जाए हुए तूरा, कहो नानक

भय परया जप नाथ दिन रहनाई तेरी खिंता दो दिहाई रहाओ गहरी बिपूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा ताई मांगे टूका तृप्त न पावे नाद छोड़ जाचे लाज न आवे क्याल चित जोगी आसन तेरा सिंगी वाजे नित उदासेरा गुर गुर कीते बूझ न पाई फिर जोगी आवे जाई जिसन हुआ नाथ कृपाला रह रास हमारी गुर गोपाला नामे खिंता नामे बस्तर जन नानक जोगी हुआ अस्थिर क्यों जपया नाथ दिन रहनाई हुन पाया गुर गोसाई रहाओ दूजा राम कली महला पंजवां करन करा मनसोई आना दिसे कोई ठाकुर मेरा सूड सुजाना गुरमुख मिलिया रंग माना ऐसो रे घर समीठा गुरमुख किने विरले डीठा रहाओ निर्मल जोत अमृत नाम पीवत अमर पय ने काम तन मन शीतल अग्नि निवारी अंध रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब कुछ तेरा सब बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल किवारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया कहो नानक सब पड़दा टूटा हौ तेरा तू मैं मन मूठा राम करी महला पंजवा सेवक लायो अपनी सेव अमृत नाम दियो मुख देव सगली चिंता आप निवारी जिस गुर कहो सद बलिहारी ताज मारे पूरे

जिसे सहाई हुए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा ताकी केतक वर्ण बल बल जयगे ताके चरण तिन्ही किया जब तव ध्यान अनक प्रकार किया तिन दान भगत सोई।

माया मोहया टेढ़ हो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर ना चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी ऊड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सद की चू है मान मुख कवे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार इसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पात साहो मोह मगन लपट्यो परम गिरह

आनंद न हो वी सोग, कहू न व्यापे हो मैं रोग। खोजो संतो हर ब्रह्म ज्ञानी, बिस्मन बिस्म पए बिस्मादा, परम गद पावे हर सिमर प्राणी ही रखाओ। गण मन देखो सगल विचार, ना बिना को सके ना तार, सगल उपावन चल है संग, पवजल तरिगे प्रभ के रंग, देही तोय न उतरै मैल, होमे व्यापे दुबदा फैल। हर हर औखद जो जन खाए, ताका रोग सगल मिट जाए,

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसही की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माघे, करण हार कहो किस अज जनाघे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमारे बस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे बया पिया तोहे, उदम करे गाडर जो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ साधरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सा समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्र पेखत नाही। सगले कासवारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, साध संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मोह खूजल साते दरबारे। अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भाग गए। माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कै, आठ पैर मन

कारी किसना हुआ, बाणी ब्रह्मा वेद अथर्वण, करणी कीर्त लया, पद विण पूजा, सत विण संजम, जत विण कहे जनेऊ, नहावो धोवो तिलक चढ़ावो, सोच विण सोच न होई, कल प्रवान कतेब कुरान, पोथी पंडित रहे पुराण, नानक नाओ पया रहे मान, हर करता तू एको जान, नानक ना मिले वडियाई, एदू उपर कर्म नहीं, जे कर हुंदे मंगण जाएगे, फिर ओलामा मिले तही, राम कली महला पहला, जग प्रबुद्ध मड़ी बंधावे, आसन त्याग काए सज पावे, ममता मोह कामण हितकारी, ना अवधूती ना संसारी, जोगी बैस रहो दुखदा दुख भागे, हर कर्मांगत लाज ना लाग गए रखाओ, गावे गीत न चीन आप, क्यों लागी निवरे प्रताप, गुर के शब्द रते मन पाए, तिखिया सहज विचारी खाए, पसम चढ़ाए करे पाखंड, माया मोह सह जम डंड, फूटे खापर पीख न पाए, बंधन बाध्या आवे जाए, बिंद न रख है जति कहावे, माई मांगत त्रै लोभावे, निर्दया नहीं जोत को जाला, बूढ़त बूढ़े सर्व जंजाला, पेख करे खिंता बो थटुआ, झूठो खेल खिले बो नटुआ, अंतर अगन चिंता बो जारे, विण कर्मा कैसे उतर सपारे, मुंदरा फटक बनाई कान, मुक्त नहीं विद्या विज्ञान, जे वह इंद्री साध लुभाना, पशु पय नहीं मिटे निशाना, त्रिब्द लोगा त्रिब्द जोगा, सब विचारे चूकस सोगा, पूजल साच सो शब्द होए, जोगी जूत विचारे सोए, तुझ पे नवनिध तू करने जोग, थाप थापे करे सोहोग, जात सा संजम तसो चीत, नानक जोगी तिर पौन मीत, राम कली महला पहला, खट मट देही मन बैरागी, तुरत शब्द तुन अंतर जागी, वाजे अनखद मेरा मन लीना, गुरबचनी सजना पतीना, प्राणी राम भगत सुख पाई है, गुरमुख हर हर मीठा लागे, हर हर नाम समाइए रखाओ, माया मोह बेवर्ज समाए, सगुर भेटे मेल मलाए, नाम रतन निर्मोलक हीरा, चित्राता मेरा मन तीरा, होमे ममता रोग न लागे, राम भगत जम का पौ भागे, जम जंदार ना लागे मोहे, निर्मल नाम हृदय हर सोहे, शब्द विचार पए निरंकारी, गुरमत जागे दुरमत परहारी, अनदिन जाग रहे लिवलाई, जीवन मुक्त गात अंतर पाई, अलेबत गुफा में रहे नरारे, तस्कर पांच सब संघारे, पार कर जाए न मन डोलाए, हैज निरंतर रहो सुमाए, गुरमुख जाग रहे अवधूता, तबैरागी तत परोता, जग सूता मर आवे जाए, बिन गुर शब्द न सोजी पाए, अनघ शब्द बजे दिन राती, अवध की गात गुरमुख जाती, तो जानी या शब्द पछानी, एको रब रहा निर्बानी, सुन समात सहज मन राता, तजो लोभा एको जाता, गुर चेले अपना मन मानिया, नानक दूजा मेट समानिया, राम कली महला पहला, सहा गणे न करे विचार, साए ऊपर एक अंकार, जिस गुर मिले तोई बिद जाने, गुरमत होए तहु पछाणे, झूठ ना बोल पांडे, सच कहिए होमे जाए शब्द कर लहीए रखाओ, गण गण ज्योतक कांडी कीनी, पढ़े सुनावे तत न तीनी, सबसे ऊपर गुर शब्द विचार, होर कथनी बदो न सगली शार, नावे तोवे पूजे सैला, बिनगा राते मैलो मैला, गर्भ निवार मिले प्रसार्थ, मुग्ध प्राण जप हर किरतार्थ, वाचे वाद ना वेद विचारे, हर डुबे क्यों पितरा तारे, घट घट ब्रह्म चीने जन कोए, सदगुर मेरे ता सोजी होए, गणत गणिये सहसा दुख जीए, गुर की शरण पवे सो थीए, कर अपराध शरण हम आया, गुर हर पेटे पूर्व कमाया, गुर शरण न आइये ब्रह्म न पाइये, परम भुलाइये जन्म मर आइये, जमदर बादो मरे बेकार, नारदे नाम ना शब्द अचार।

ताहू रोग सोग परमीजा ताहू पवन तार जात बेगाए संत बेगावे कीर्तन गाए ताऊ बेगावे दिन रैन चाल ताऊ बेगावे सो पिड़माल ताऊ बेहावे बाल पढ़ावत संत बेहावे हर जगावत ताऊ बेहावे नट नाटक निरते ताऊ बेहावे जिया ए हिरते ताऊ बेहावे राज मैंडरते संत बेहावे हर्ज करते ताऊ बेहावे मता मसूरत ताऊ बेहावे सेवा जरूरत ताऊ बेहावे सोधत जीवत संत बेहावे हरस पीवत जित को लाया तित ही लगाना।

दावा अग्न रहे हर बूट, माद गर्भ संकट ते शूट, जाका नाम सिमरत को जाए, तैसे संत जना राखे घर राय, ऐसे राखन घर दयाल, जत का देखो तुम प्रतपाल रखाओ, जल पीजो तिखा मिटंत, तन बिसे ग्रे आवत कंत, लोभी का तन प्राण आधार, त्यों हर जन हर घर नाम प्यार, किसानी जो राखे रखवाला, मात पिता दया जो बाला, प्रीतम देख प्रीतम मिल जाए, त्यों हर जन राखे कंठ लाए, जो अंधले पेगत होए आनंद, गूंगा भगत गावे बहुचंद, पिंगल पर्वत परते पार, हर के नाम सगल उदार, जो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राशित संत संग विनाश, जो साबन पापर उजल होत, नाम जपत ता परम पखोत, जो चक्री सूरज की आस, जो चात्रक बूंद की प्यास, जो कुरंक नाद कर्ण समाने, त्यो हर नाम हर जन मने सुखाने, तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पहेता आए चीत, दया तारी तन तारण हार, बंधन ते होई छुटकार, तब थान देखे नैन अलोय, जिबन दूजा अवर न कोय, परम पै छूटे गुर प्रसाद, नानक पेख्यो सब विस्मात, राम कली महला पंजवा, जी जंत सब पेखिए, प्रसगल तुम्हारी तारना, यो मन हर के नाम पधार।

राख लिगे भगत जन अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सुख कल्याण कीर्तन प्रा लगा मीठा पाना, तब इश कुन्नी आस पूरी मिले सद गुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आप मेले फिर नाही दुख बसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण त्रिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहे एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सुभागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पै संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाय प्रभ दीना नाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एक तिसे सो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, ससदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक रतन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पकड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध भया वड पागी हो ग्रे प्रगटे प्रभ आए जियो, ग्रे लाल आए पूर्व कुमाए ताकि उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमल रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए कंठ लाए तिस बिना नहीं जाए जियो, बल जाए नानक सदा करते सब मैं रहा समाए जियो। राग राम कली महला पंजवा, राणा चुंजनड़ा गाओ सखी हरेक त्याव हो सतगुर तुम सेव सखी,

केलवक काटन पय हरण तूसागर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याए शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सोभावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियाथिया नानक जप भगवंत संत रुत सरस बसंत महा चेत वैसाख सुख महा जियो हर जियो नहो मिलया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंध सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप संत ग्रीख मरुत अत गाखड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध वागणी दृष्ट न करी राम जियो ने दृष्ट आवे मर्त हावे महागार्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरने दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो तन उन उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहया सर्वठाई हर नाम नवनिध गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब करे प्रे रंग जागे नय छिद्र लागे किरपाल साधबक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तिल पल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडम्बरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे नए सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन की प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मनतन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले द्वितीया बिरसी प्रांत तद पठाए आप हर हम तुम ते नाही दूर नानक प्रम पै मिट गए रमण राम पर पूर शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जल बुझी दस पाया मिसे माया त्रो जियो अब कां पूरे मेर हजूर हर चरण सेवक सेवया हार डोर सीगार सब रस गुण गाव अलख पेवया पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साके जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आ मेली तैना प्रेम शो जियो श्लोक हर तन पाया सुहागणी डोल तनाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रटे प्रमीत नाल बिनोद आनंद कोट प्रे प्रीतम संग बने मन बांशत फल पाया हर नानक ना पने शंत हिम कर उत्मन पावती माघ फगन गुणवंत जियो सखी सहेली गाओ मंगलो ग्रे आए हर कंत जियो ग्रे लाले आए मनते आए तेज सुंदर सोईया वाण त्रेण त्रिपौन पय हरिया देख दर्शन मोहिया मिले स्वामी इश पुन्नी मन जपया निर्मल मंत जियो बिनवंत नानक नित करो रलिया हर मिले श्री तरकंत जियो श्लोक संत सहाई जी के फवजल तारण हार तब ते ऊचे जानिए नानक नाम प्यार जिन जानिया
ते ही तरे ते सूरे से वीर नानक तिन बिहारण हर ज उतरे तीर शंत चरण बरायत स ऊपरे मिटिया सगल कलेस जियो आमन जामन दुख हरे हर पगत किया प्रवेश जियो हर अंगरा ते सहज माते तिलना मन ते बीसरे तज आप सरणी परे चरणी सर्व गुण जगदीशरे गोविंद गुण श्री रंग स्वामी आदि को आदेश जियो बिनवंत नानक मया तारो जुग जुगो एक वेश जियो राम कली महला पहला दक्षिणी ओ अंकार एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद ओ अंकार ब्रह्म उत्पत ओ अंकार किया जिन चित ओ अंकार सैल जुग भय ओ अंकार वेद निर्मय ओ अंकार शब्द उदरे ओ अंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर निरपमसार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाय तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस्त प्राप्त होवे चुन ले मानक मोती समझे सूझे पड़ पड़ बूझे अंत निरंतर साचा गुरमुख देखे साच संभाले बिन साचे जग काचा तदे धर्म तरे तरमापुर गुणकारी मन धीरा तदे तूल पड़े मुख मस्तक कंचन पए मनूरा तन तरणी तर आप अजोनी तोर बोसज पूरा करते की मित करता जाने कहे जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिग खाया गोरस गीत बादनी पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुरस कहे अमृत लया मन तन सा सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एक को एक कहे सब कोई होमे गर्भ वे आपे अंतरवार एक पछाणे क्यों कर मैल संजापे प्रभ नेड़े हर दूर ना जानो एको सृत सबाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते को क्यों गए राखो अफरे तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ ठ गौरी पाई लाभ लोभ मोहताज विगूते एवता फिर पछताई एक सरेवे ता गत मित पावे आमन जान रखाई एक अचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि असरूप एको पावर पवे ते लोए एक को बूझे सूझे पत होए ज्ञान जान ले समसर रहे गुरमुख एक विरला को लहे जिसनु दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊर्म तूर्म जोत उजाला तीन पण में गुर गोपाला उगव्या असरूप दिखावे कर कृपा अपने कर आवे ऊन बरसे निजर तारा उत्तम तब सवारन हारा इस एके का जाने पेओ आपे करता आपे देओ उगवे सूर असर संघारे ऊंचो देख शब्द विचारे ऊपर आद अंत लोए आपे करे कसे सुने सोए ओ विधाता मन तन दे ओ विधाता मान मुख सोए प्राप जग जीवन अवर न कोए नानक नाम रते पद होए अराजन राम रवे हितकार रण में लूजे मनुआ मार रात दिन अंत रहे रंगराता तीन पौन जो चारे जाता जिन जाता सो तिस ही जेहा आत निर्मायल शीश देहा रे सी राम हृदय एक पाए अंतर शब्द सात लिवलाए रोस न कीजे अमृत पीजे रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना आए जाए जुग चारे रहन कहन ते रहे न कोई इस पे करो बेनंती एक शब्द राम नाम निरोधर गुरदेवे पतमती लाज मरंती मर गई भूगुट खोल चली साध दिवानी बाबरी सिरते संक टली प्रेम बुलाई रलीस्यों मन में शब्द आनंद लारती लाली पई गुरमुख पई निचिंद लहा नाम रतन जब सार लब लोभ बुरा अंकार लाड़ी चाड़ी लाए तबार मानमुख अंधा मुग्ध गवार लाहे कारण आया जग होए मजूर गया ठगाए ठग लहा ना पूंजी वे साहो नानक सची पात सच्चा पात साहो आए विगूता जग जम पंथ आई ना मेटन को समरथ आस सहल नीच कर होए।